0: बहुत ही सुंदर कविता, सभी अभी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, जोर से बजाओ सारे बच्चे। और कुछ सुनाना है बेटा?
1: एक कहानी।
0: एक कहानी। आपकी कहानी का शीर्षक क्या है?
1: खजाने की खोज।
0: खजाने की

0: इस सुंदर से फिल्मी गीत के साथ ही हमारा आज का यह बालवाड़ी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इस वादे के साथ कि अगले रविवार ठीक सुबह 9 बजे इसी बालवाड़ी कार्यक्रम में हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।
1: जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम बालवाड़ी, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:29 हुए हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किस

0: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़, और आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं बेताब फिल्म के कुछ गीत।

फिल्म बेताब सन 1983 में बनी एक भारतीय प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म है, जिसे जावेद अख्तर ने लिखा है, राहुल रवेल ने निर्देशित किया है और विक्रम सिंह देहल ने निर्मित किया है। फिल्म में सनी देओल और अमृता सिंह ने अपनी पहली भूमिका निभाई है। साथ ही शम्मी कपूर और प्रेम चोपड़ा भी इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे।

फिल्म बेताब का कथानक विलियम शेक्सपियर के द टेमिंग ऑफ द श्रू पर आधारित था। फिल्म बेताब का संगीत दिया था राहुल देव बर्मन ने। 1981 में यहां फिल्म रिलीज की गई थी। यह फिल्म दो ऐसे युवाओं की प्रेम कहानी है जो अपने परिवारों के बीच सामाजिक असमानता के बावजूद एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। तो आइए सुनते हैं फिल्म बेताब का एक और गीत।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे फिल्म बेताब के कुछ गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे हैं।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। कल से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। रायपुर में कल से शुरू हुई 25वीं छत्तीसगढ़ राज्य शूटिंग मीट और जशपुर जिले के तपकरा क्षेत्र में हाईवा और कार के बीच हुई भिड़ंत में 2 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल 13 जुलाई से शुरू होगा। 17 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान वित्तीय कार्य के साथ अन्य शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। इस बीच मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत की अध्यक्षता में आज रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देशभर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे और जनभागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में परिवर्तित करने का आह्वान करेंगे। इस कार्यक्रम में देश के लगभग सभी राज्यों से ऐसे वृक्ष मित्र पहुंचेंगे जिन्होंने वृक्षारोपण, जल संरक्षण और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। केंद्रीय मंत्री वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी आज रायपुर में मानसून के दौरान प्रमुख औद्योगिक इकाइयों द्वारा संचालित और प्रस्तावित वृक्षारोपण गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान वृक्षारोपण कार्यक्रमों की प्रगति, उनके क्रियान्वयन, पौधों

समूहों में मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं। जशपुर में तपकरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत उड़ीसा कुनकुरी मार्ग में लवा केरा के पास शनिवार को एक तेज रफ्तार हाईवा और कार के बीच आमने सामने से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है।

जानकारी शामिल है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। रायपुर में कल से शुरू हुई 25वीं छत्तीसगढ़ राज्य शूटिंग मीट और जशपुर जिले के तपकरा क्षेत्र में हाइवा और कार के बीच हुई भिड़ंत में 2 लोगों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलशन, इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं नए तराने। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं से, जुबिन नौटियाल की आवाज है। गीत और संगीत अजय सिंघा का है।

बॉर्डर टू, आइए अब इस फिल्म का गीत सुनते हैं। स्वर विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की है, मनोज मंतशिर के बोल है और विशाल मिश्रा का संगीत है।

निदायाल और हानिया नाफिजा के स्वरों में अभी आप सुन रहे थे कनेक्ट फिल्म का गीत। रचना आकांक्षा सेठी की थी, धुन बनाई थी पृथ्वी चंद्रशेखर ने। दाग द बर्निंग फायर, आइए अब इस फिल्म का गीत सुनते हैं। विमल कश्यप की रचना है और मानी शर्मा का संगीत है।

मेरा दिल थक थक करता है और मैं खिंची खिंची चली आती हूँ। कदम मेरे तेरी ओर बढ़ते जाएं, जिंदगी की आग।

दो और दो प्यार, आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं। गीत और संगीत द लोकल ट्रेन की है, स्वर दिया है लकी अली ने।

प्रभात कुमार ने गीत लिखा है, संगीत पुनीत अवस्थी नितेश श्रीवास्तव का है, स्वर दिया है पलक मुच्छल और पुनीत अवस्थी ने, फिल्म है एक अंक।

सुवर्णा तिवारी के गाए इस गीत को लिखा है लवराज ने और संगीत दिया है हितेश मोदक ने। फिल्म है जोगिरा सारा रारा।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गुलशन संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे नए तराने। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम चाहत। प्रस्तुति मनिंदर सिंह देवगुण की है। संयोजक है चंद्र ऋषि ठाकुर।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम फोन इन चाहत और मैं हूँ मनिंदर सिंह देवगुण। आज की इस महफिल में श्रोताओं से दिल खोलकर बातें होंगी, कहीं रिमझिम बरसात की फुहारों का जिक्र होगा तो कहीं बदलते मौसम का हाल। आने वाले पावन सावन की खुशबू के साथ घरों में बनने वाले स्वादिष्ट पकवानों की बातें भी होंगी। गुरु पूर्णिमा के महत्व पर चर्चा होगी तो प्रकृति के प्रति अपने दायित्व को निभाते हुए पौधारोपण का संदेश भी गूंजेगा। इन सभी प्यारी बातों के साथ आपकी पसंद के मधुर गीतों का सिलसिला भी चलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का फोन इन चाहत।
1: हेलो फोन इन चाहत।
2: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: ग्राम मामरपाल दरबार से गणपत बघेल बोल रहा हूँ सर।
2: गणपत बघेल, सबसे पहले आपका स्वागत है, बताइए क्या हाल चाल है आपके?
1: ठीक हूँ सर।
2: ठीक है
1: जी।
2: और क्या हो रहा है अभी आपके तरफ?
1: अभी खेत में सर, अभी वही रोपा उपा चल रहा है।
2: अच्छा,
1: तो मैं सोचा बहुत दिन हो गया तो फोन इन चाहत में कॉल करके देखता हूँ, बोला फिर।
2: बिल्कुल बिल्कुल, समय का ख्याल रखें आप।
1: जी जी जी।
2: तो आज फोन इन चाहत कार्यक्रम में आपको कौन सा गीत याद आ रहा है?
1: कोई भी नया वाला फिल्म का गाना सुना देंगे सर।
2: आपको याद नहीं आ रहा गीत?
1: जी।
2: अच्छा, तो नए गीत आप पसंद करते हैं या पुराने गीत?
1: नए गीत भी दोनों पसंद करते हैं सर।
2: दोनों पसंद करते हैं। और आज आपने,
1: लेकिन आज नया गीत सुनने का मन कर रहा है तो नया गीत सुना दीजिए।
2: नए गीत को सुनने का मन कर रहा है आपको? वैसे आप बता दीजिए, कोई गीतकार या कोई गायक का नाम बता दें, या अरिजीत सिंह का गाना आप सुनना चाहते हैं या फिर श्रेया घोषाल का गाना सुनना चाहते हैं, किसी की आवाज बता दीजिए, किसी गायक की आवाज, किसकी आवाज में आप सुनना चाहेंगे?
1: श्रेया घोषाल की आवाज में सुना देंगे सर।
2: श्रेया घोषाल की आवाज में सुनना चाहेंगे?
1: जी।
2: चलिए, बारिश का मौसम है, बरसात का मौसम है, और इस मौसम में श्रेया घोषाल का ये जो गीत है काफी प्रचलित भी है और हमें बार बार याद भी आता है। तो गणपत जी, कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। हमसे बात हुई उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन इन चाहत
1: जी। सर नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार,
1: संजीत कुमार बोल रहा हूँ सर, पांड्याड गांव परस गांव से।
0: परस गांव से संजीत कुमार जी बोल रहे हैं
1: जी। सर
0: क्या हाल चाल है संजीत जी आपके?
1: बढ़िया हाल चाल है सर, आप बताइए।
0: हमारे भी हाल चाल अच्छे हैं। और अभी क्या कर रहे हैं आप?
1: इन दिनों तक खेती किसानी चल रहा है सर, पानी की बहुत दिक्कत है सर, पानी नहीं गिर रहा है तो।
0: बारिश नहीं हो रही है
1: जी सर।
0: अच्छा, तो ऐसे समय में आप फिर कैसे व्यवस्था करते हैं अगर बारिश ना हो?
1: ट्यूबवेल की सहारा ले रहे हैं सर।
0: ट्यूबवेल का सहारा ले रहे हैं
1: जी सर।
0: अच्छा, तो आपने ट्यूबवेल करवाया है अपने खेत में?
1: जी सर।
0: नहीं, ये अच्छी बात है।
1: पानी नहीं है सर, बहुत दिक्कत है, तो पानी तो गिरा नहीं है तो नदी में बह नहीं रहा है।
0: हाँ हाँ, तो इस वजह से आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है
1: जी सर।
0: तो बारिश तो अभी काफी अच्छी हुई थी बीच में?
1: हमारी तरफ नहीं हुआ है सर, हल्का फुल्का हुआ है बस आसपास में।
0: अच्छा, तो ठीक है, हम भी चाहेंगे कि आपके तरफ बारिश हो। तो और बताइए, कुछ कहना चाहते हैं आप?
1: बरसात का मौसम है सर, अपना ख्याल रखें सर, बीमारियों का प्रकोप रहता है तो।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इस मौसम में वैसे आप स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखते हैं?
1: अपन तो ख्याल रखते हैं ही सर।
0: ख्याल रखते हैं मतलब क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं आप? पानी गरम पीते हैं या
1: गरम कपड़ा भी करते हैं सर?
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हेमराज जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: फिल्म बलम।

0: आपकी नजर में एक अच्छे दोस्त की सबसे बड़ी खूबी क्या होनी चाहिए?
1: एक दोस्त सर ऐसा हर सुख दुख में उनके साथ काम आना चाहिए सर।
0: सुख दुख में साथ देने वाला दोस्त ही सबसे अच्छा दोस्त होता है आपकी नजर में, ये कहना है।
1: हर वक्त कहीं भी रहे मुश्किल की घड़ी में भी वो साथ दे।
0: जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको और आपके दोस्तों को हम सुनवाते हैं फिल्म वलमा का ये गाना, आपने जो पसंद किया है, हमसे बातचीत हुई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: हाँ फोनिन चाहत सर, नमस्ते। मैं मुन्ना लाल कश्यप ग्राम चौकर माझी पारा से बोल रहा हूँ सर। कैसे हैं
3: मुन्ना लाल कश्यप जी?
2: जी सर, कैसे
3: आपकी
2: सर?
3: हमारी भेंट हो गई फिर से।
2: हाँ सर, बहुत दिन के बाद हुआ सर।
3: बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। बढ़िया हैं आप? बताइए आपका क्या हालचाल है?
2: मैं भी बढ़िया हूँ सर। मेरा भी एग्जाम खत्म हो गया और मेरा बीएड भी खत्म हो गया।
3: कैसे गया आपका पेपर?
2: पेपर बढ़िया गया सर।
3: बढ़िया गया
2: जी सर। अभी टेट का एग्जाम है तो उसका तैयारी कर रहा हूँ।
3: अच्छे से तैयारी चल रही है आपकी?
2: जी सर जी।
3: और मौसम काफी अच्छा है आपकी तरफ?
2: हाँ मौसम तो बस वैसे है सर, लेकिन इस बार थोड़ा बारिश

0: कम हो रहा है,
1: बारिश कम हो रही है, बारिश आ जाएगी। अभी तो पूरा मौसम बाकी है, सावन का महीना बाकी है आने को, है ना?
0: जी सर,
1: कि सावन भी शुरू होने वाला है कुछ दिनों में।
0: जी सर जी।
1: तो आपको इस सुहाने मौसम में वैसे पूछा जाए तो आपको किसी एक पुराने गीत की अगर हम बात करें फिल्मी गीत की और आपको सुनाया जाए तो आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे मुन्ना लाल जी?
0: सर मेरे को ये कि फिल्म का नाम मेरे को पता नहीं, लेकिन वो गाने का बोले सावन आए बादल छाए लेकिन तुम कब आओगे।
1: आप गा के बता सकते हैं?
0: गा के तो नहीं बताऊंगा सर, लेकिन गाने का बोल याद है बस।
1: चलिए बढ़िया। वो
0: साधना सर का,
1: सावन आया बादल छाए वैसे ना,
0: लेकिन तुम कब आओगे। जी सर।
1: हाँ हाँ हाँ हा। जी जी बिल्कुल, ये कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज में है गाना।
0: जी सर जी जी, मैं यही गाना सुनना चाहूंगा सर।
1: बिल्कुल, आपकी पसंद का ये गाना हम आपको सुनवाते हैं। और रही बात आपकी बारे में जानकारी की, तो हमें पता है कि आप जो हैं क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी इस बारे में बात की है आपसे।
0: जी सर जी जी,
1: है ना? आपका पसंदीदा खेल क्रिकेट है।
0: जी सर।
1: तो आप कभी खेलना पसंद किए हैं?
0: हाँ सर, मैं खेलना पसंद किया हूँ और मैं 2-3-4 बार हम लोग छत्तीसगढ़ टीम से भी जा चुके हैं।
1: अच्छा
0: जी। ये एक बार गए थे सर हम लोग पंजाब गए थे, फिर एक बार मुंबई गए थे।
1: अच्छा
0: जी। एक बार अभी अभी ये पिछले साल ही हम लोग ग्वालियर गए थे सर।
1: अच्छा, तो अभी आप प्रैक्टिस में हैं मतलब आप?
0: जी सर, जैसे कभी कभार हम लोग, जैसे हम लोग ब्लाइंड भाई अगर हम लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं तो हम लोग को ब्रेल बॉल के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं सर।
1: अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो इसी बहाने आपको जो है कहीं दूसरी जगह जाने का मौका भी मिलता है
0: जी,
1: है ना? और खेल का खेल भी हो जाता है,
0: मिलना भी जुलना भी हो जाता है।
1: हाँ जी हाँ जी। और सबसे अच्छी बात है खेलने से शरीर भी जो है तंदुरुस्त रहता है।
0: जी सर।
1: अपने लाइफ में अपने आप को व्यस्त रखने का हमेशा प्रयास रखना चाहिए हर किसी को।
0: जी सर जी।
1: बहुत अच्छे गीत की आपने फरमाइश की है,
0: गाते बहुत अच्छे हैं आप।
1: अच्छा, थैंक यू थैंक यू। तो आप हमारे श्रोताओं के लिए कुछ कहना चाहते हैं?
0: श्रोताओं से बस यही कहूंगा सर, तो बारिश थोड़ा कम हो रही है तो थोड़ा पेड़ पौधा थोड़ा ज्यादा लगाएं, क्योंकि ये पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी हो सकता है।
1: बहुत अच्छी बात है, और ये तो इतना अच्छा मौसम है और पौधरोपण करने का।
0: मैं स्वयं मैं 2 टन फिलहाल आम का पेड़ लगाया हूँ सर। मैं आगे भी अभी जो थोड़ा ज्यादा बारिश होगा तो अभी इमली का पेड़ भी लगाऊंगा सर मैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वृक्षारोपण करना चाहिए। और इससे जैसे ये अभी समस्या आ रही है, बारिश की समस्या आती है, और जैसा आपने बताया कि पर्यावरण को भी लेके कई दिक्कतें आती है, तो वृक्षारोपण जितना ज्यादा होगा, जितना हम पौधे रोपेंगे उतने ही हमें जो है वातावरण भी अच्छा मिलेगा, उतनी ही हमारी जो जमीन है वो खुशहाल होगी, है ना?
0: जी सर जी।
1: तो
0: जी, जी।
1: बहुत अच्छी बात की आपने।
0: मैं कुछ बोलना चाहूंगा सर।
1: हाँ जी बोलिए
0: सर। जितने भी श्रोता है सर, तो हमारे आकाशवाणी जगदलपुर के एक यूट्यूब चैनल है, तो उसको सब्सक्राइब करने से और अच्छा बेहतर होगा सर, हमारा आकाशवाणी जगदलपुर और ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकता है यूट्यूब के माध्यम से।
1: जी जी, बहुत सही कहा आपने, और हमारे श्रोता भी इसका ख्याल रखेंगे, आगे आने वाले समय में जरूर वो यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करें आकाशवाणी के इस चैनल को। ठीक है,
0: करके बहुत अच्छा लगा सर आपसे।
1: हाँ जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा मुन्ना जी, आप जब भी बात करते हमें अच्छा ही लगता है। चलिए आपकी पसंद का गाना सुनते हैं, धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो, बोलिए, कौन बोल रहे हैं?
0: जी सर, मैं सुनील यादव बोल रहा हूँ सर, अमोड़ा केस काल से।
1: ये नाम तो हम रोज लेते हैं श्रोता सुमन में, ऐसा लगता है हमें।
0: जी जी बिल्कुल सर।
1: हाँ, और जहाँ तक, अरे भरे, आपके पीछे तो मुर्गे की भी आवाज आ रही है।
0: अरे सर है ना सर, घर में पाले हुए हैं।
1: अच्छा, तो अमोड़ा केशकाल के हमारे सुनील यादव जी, रेडियो के प्रेमी, आज क्या कहना चाहते हैं आप?
0: जी सर, अभी तो खेती बाड़ी का ही तो काम चल रहा है सर जी, मैं बेंजो बजाता हूँ सर वैसे।
1: हाँ, आप बेंजो बजाते हैं, हमें पता है। अभी आपके आसपास बेंजो पड़ी है?
0: पड़ी है सर, लेकिन लाइट नहीं है।
1: लाइट नहीं है तो आप उसे बजा नहीं पाएंगे।
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: आप गीत भी गुनगुनाते होंगे बजाने के साथ साथ?
0: सुना तो नहीं है सर, लेकिन हम लोग बजा लेते हैं बस।
1: बजा लेते हैं। जुलाई का महीना चल रहा है ये।
0: जी जी।
1: तो आपके लिए कुछ खास याद लेकर आता है ये महीना?
0: जाता है ना सर।
1: क्या बताएं?
0: अभी तो सावन चालू होने वाला है सर।
1: हाँ बिल्कुल, सावन जो है शुरू होने वाला है, तो सावन का कौन सा रंग या परंपरा आपको सबसे अधिक पसंद है, बताइए?
0: ये भी सावन चलेगा ना सर, तो हम लोग का क्या है, हम लोग इस रामायण वामायण जाते हैं, तो उसमें भक्तिमय रहते हैं सर जी, हम लोग सावन पूरे
1: भक्तिमय माहौल रहता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
0: कांवड़ यात्रा भी,
1: कांवड़ यात्रा भी इस महीने काफी ज्यादा होती है, तो आप जाते हैं कहीं कांवड़ लेकर?
0: अब तक गया तो नहीं सर, लेकिन शौक है।
1: अच्छा, जाने की तमन्ना है लेकिन आप अभी तक गए नहीं हैं?
0: जी जी सर, वही अब हम लोग वही भक्ति में कार्यक्रम मन में रहते हैं, तो हो नहीं पाता जाने।
1: हो नहीं पाता है, चलिए कोई बात नहीं, आपकी इच्छा जरूर पूरी हो, हम यही कामना करते हैं। अब आपकी पसंद का गाना बता दीजिए।
0: वो एक फिल्म है फुटपाथ, कितना प्यारा प्यारा है ये समा, इस तरह का गीत है सर।
1: अच्छा, तो चलिए आपकी पसंद का गाना सुनते हैं फुटपाथ फिल्म से।

0: कसरता।
1: अशोक सिंह जी बोल रहे हैं,
0: क्या बात
1: सर,
0: है सर, कैसे हैं आप?
1: हम तो बढ़िया हैं। पहले ये बताइए, ये जो है जोहार जो है, ये आपने आपके उस क्षेत्र में बोला जाता है कि आपने हमारे कार्यक्रमों से सीखा है?
0: अरे सर, हम तो इनकम टैक्स कोर्ट में तो सर्विस किया और सब जगह घूमा भी, तो सब भाषा जानते
1: हैं। अरे वाह वाह, वही मुझे लगा
0: सब आपके उधर से आते थे, वो लोग भी बोलते थे ना, बिलासपुर इधर से आते हैं,
1: जी जी,
0: तो सब भाषाओं के जानते हैं, ससरिया काल और जो भी है उनका खंबा घड़ी, हम सब जगह बोलते हैं,
1: सब जगह बोलते हैं। नहीं, अच्छी बात है।
0: देखिए,
1: तो आप अभी क्या कर रहे हैं?
0: मैं सर रिटायरमेंट हूँ इनकम टैक्स कोर्ट से।
1: जी जी जी, आप रिटायर
0: जो तीन साल हो गया है, बस रेडियो 75 से दीवाना हूँ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, और बताइए आपके शहर में जो है बारिश ने दस्तक दी है या अभी इंतजार है?
0: दस्तक दी है, मगर आज तो खुला है सर, जोर से नहीं बरसा रही है, फुहार जैसी पड़ती है।
1: अच्छा, बचपन की बरसात की कोई ऐसी याद जिसे आज भी आप याद करके मुस्कुरा जाते हो या मुस्कुराहट आ जाती है आपके चेहरे पे?
0: बरसात की याद तो बहुत ही आती थी, घूम रपट के गिरते थे वहाँ का, हमारे यानी यूपी का रहने वाला, वहाँ की ये कुमार वाली ये पड़ोर बोलते हैं ना, चिकनी मिट्टी वो रहती थी
1: जी,
0: उससे बहुत फिसलते थे कच्ची मिट्टी में भी, तो बहुत गिरते थे, तो बहुत पढ़ने भी जाते थे, तो बहुत ही यादें हैं। बारिश की तो खूब यादें हैं, खेतों में भी काम किया तो बारिश की यादें ही यादें हैं।
1: तो अशोक सिंह जी, इस बारिश के मौसम में आपको कौन सा गीत याद आता है अक्सर?
0: सावन का महीना आया है, घटा से बरसा है पानी,
1: तो यही गीत चला दें
0: जी?
1: आप यही गीत सुनना चाहते हैं आज के इस प्रोग्राम में?
0: जी जी जी, आई मिलन की रात।
1: क्या बात है, आई मिलन की रात का गाना काफी प्रचलित है ये गीत। और बताइए अशोक जी, क्या हमारे श्रोताओं के लिए कुछ कहना चाहते हैं आप?
0: श्रोताओं से यही कहना चाहते हैं कि बरसात का मौसम है, खान पान का भी ध्यान रखें, साफ सफाई रखें, पानी का निकास वगैरह बना, जिससे संक्रामक रोग न फैले, और एक पेड़ लगाए, सभी को पेड़ लगाना चाहिए बरसात का मौसम है, की सुरक्षा भी उसको बड़ा भी करना है, लगाना ही नहीं है।
1: अब अशोक जी, आपसे काफी अच्छी बात हुई और आपके जबलपुर तक पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का गाना आई मिलन की रात का ये प्यारा।
0: जय जय जोहार,
1: जय जोहार, जय जोहार।

0: हेलो, फोन इन चाहत।
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार,
1: मुकेश कुमार साहू बोल रहा हूँ जी, कर्नाटक से, जिला कोलार से।
0: बताइए क्या हाल चाल है।
1: सब बढ़िया है सर।
0: कैसा मौसम है, बारिश हो रही है आपकी तरफ?
1: बारिश सर अभी 2-3 दिन हुआ है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा।
0: अच्छा,
1: और मौसम तो रोज ही बारिश का लगते हैं, अम्मा की हो।

0: बाकी इसीलिए
1: वहाँ
0: फेमस
1: वहाँ
0: है
1: एक फिल्म की
0: कोलार।
1: शूटिंग भी हुई है वैसे।
0: जी,
1: KGF की शूटिंग हुई है, बिल्कुल सही है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं मुकेश जी?
0: मिलन का सुना देना सर, सावन का महीना पवन करे शोर।
1: क्या बात है, ये गाना आपको आज इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि मौसम ऐसी बन रहा है ना, माहौल भी आ रहा
0: बिल्कुल
1: है,
0: बिल्कुल
1: सावन भी
0: सर।
1: आने को है।
0: जी सर, और हमारे बिलाईगढ़ से रोशन देवांगन जी का जन्मदिन है, तो उसको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देते हैं सर।
1: अच्छा, बधाई के साथ ये गाना उनको आप डेडिकेट कर रहे हैं,
0: बिल्कुल सर।
1: बहुत अच्छी बात है। तो आपके इस गीत को आइए सुनते हैं और आपके मित्र को भी सुनाते हैं।
0: बिल्कुल सर।
1: जी, चलिए ठीक है, धन्यवाद।
2: सावन का महीना पवन करे शोर,

0: れソール、
1: ババ抜かれショール、
0: あれババショールないソール、ソール、ソール。

0: हेलो, फोनिंग चाहत
1: सर। नमस्कार सर जी।
0: हाँ जी नमस्कार।
1: बलराम सेन दंतेवाड़ा बचेली से बोल रहा हूँ सर। मैं
0: बलराम सेन दंतेवाड़ा बचेली से बोल रहे हैं
1: जी। सर
0: कैसे हैं बलराम जी?
1: बढ़िया हूँ सर जी। बहुत देर से आप ट्राई कर रहा था, मैं बोला कि नहीं लगेगा, बल्कि मैं तो छोड़ दिया था आज।
0: अच्छा, और बचेली में तो बहुत बारिश हो रही होगी।
1: बारिश हो रही सर, अभी भी बारिश गिर रहा है सर। बारिश होता रहता सर यहाँ पर, और गर्मी के दिन में सर यहाँ पर थोड़ा ठंडा भी महसूस होता सर यहाँ पर। उतना ज्यादा गर्मी नहीं रहता बाहर से, मतलब बाहर जितना रहता है ना उतना यहाँ मतलब नहीं रहता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सही। तो आप काफी आनंद ले रहे हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो इस मौसम में क्या कौन सा पकवान ज्यादा खाना पसंद करते हैं आप?
1: अभी तो सर वही शाम को पकौड़ा
0: पकौड़ा। अच्छा, कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे और हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे आज?
1: सर फिल्म का नाम सर गुनाहगार, जिसमें गाना सर रैन इज फीलिंग झमाझम, इस टाइप का गाना है सर।
0: लड़की ने आंख मारी गिर गए हम। तो आपने फिल्म गुनाहगार का गीत सुनना चाहा है, रेन इज फॉलिंग छमा छम छम।
1: जी बिल्कुल।
0: तो छमा छम तो आपके यहाँ बारिश हो रही है।
1: जी जी सर, इसीलिए तो सर मैं गाने को सर चॉइस किया सर मैं।
0: नहीं, गाने को तो आप चॉइस किए, लेकिन अब हम इधर से गाना बजा रहे हैं तो आप वहाँ डांस करेंगे ना अभी? इस गाने के साथ आप भी थोड़ा झूमिएगा, है ना?
1: बिल्कुल सर, ये सर गाना वैसे ही सर।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए प्ले करते हैं आपके इस गीत को।

0: क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ
1: और कल होगा भी नहीं।
0: तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है?
2: ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं।
0: और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो, अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे
1: और फास्ट रिटर्न से बच के
0: और फास्ट बॉलिंग से भी।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हेलो, फोन इन चाहत
5: जी। भैया नमस्ते।
4: हाँ जी नमस्ते।
5: सिरवा बांधा रिमी तरह से रंजीता जांगड़ी।
4: रंजीता जांगड़ी जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, इससे पहले आपने कॉल किया इस प्रोग्राम में?
5: जी अभी तो नहीं, बहुत पहले की थी।
4: बहुत पहले आपने बात की, इतने दिनों बाद आप कॉल कर रही हैं, तो आपने ऐसे ही फोन लगा दिया या आप चाह रही थी कि आज फोन लग जाए?
5: नहीं, आज फोन

0: एक परिवार को संभाल कर रखना, टाइम पर सबको की सुविधा अनुसार सारी चीजें उपलब्ध कराना, और रेडियो भी आप सुनती हैं?
1: जी जी जी भैया।
0: आकाशवाणी जगदलपुर आप सुनती हैं?
1: जी भैया सुनती हूँ।
0: अभी आने वाले समय में सावन का जो महीना शुरू होने वाला है, तो आप इस सावन के महीने में उपवास रखती हैं?
1: जी भैया उपवास तो नहीं रखते हैं, लेकिन हमारे इधर आसपास कवर्धा जिले में भोरमदेव का मंदिर है, वहाँ जाते जरूर हैं।
0: अच्छा, इस सावन के महीने में कोई आपकी परंपरा होती होगी घर में जो करते होंगे, ऐसा कुछ होता है?
1: जी भैया ऐसे तो गांव में बहुत से लोग सावन सोमवार को उपवास रहते हैं, और जैसे कि महादेव जी का जो मूर्ति होता है उसमें जल का अभिषेक भी करते हैं, जल चढ़ाते हैं।
0: जी जी जी।
1: ऐसा होता है, हमारे गांव में भी होता है, बहुत लोग करते हैं।
0: और कुछ ऐसा खास पकवान कौन सा बनाते हैं आप इस समय?
1: ऐसे तो जैसे कि कुछ भी, लेकिन ज्यादा करके जैसे दूध चढ़ाते हैं, तो उसी के हिसाब से जैसे कि खीर है, पूरी है, ये सब बनता है।
0: ये सब बनता है, बहुत अच्छी बात है। कौन सा गीत आज आपने सुनना चाहा है इस प्रोग्राम में?
1: हम आपके हैं कौन फिल्म का ये मौसम का जादू है मितवा।
0: हाँ हाँ, क्या बात है।
1: अभी बरसात का मौसम है और मौसम भी बहुत सुहाना है, तो उसी के ऊपर ये गीत सुना दीजिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल चुनकर ये गीत आपने पसंद किया है मौसम के हिसाब से, और इस सुहावने मौसम में आपसे हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, पकवान के बारे में भी जाना, आपकी सावन के ऊपर होने वाली परंपराओं के बारे में भी आपसे जानकारी ली, काफी अच्छा लगा। रंजीता जांगड़े जी, तो आपको गीत संगीत बहुत पसंद है?
1: जी भैया बहुत पसंद है, जैसे कि घर के काम करते करते भी हम लोग जैसे मोबाइल है तो उसमें गाना चालू कर देते हैं और घर का काम करते रहते हैं।
0: और ज्यादातर जो आप गीत हैं पुराने सुनती हैं या नए गीतों को आप पसंद करती हैं?
1: जी भैया मैं पुराने गीत ज्यादा सुनती हूँ।
0: पुराने गीत ज्यादा सुनते हैं। आपकी हमारी बातचीत हुई रंजीता जी, बहुत अच्छा लगा। अब आपकी पसंद का गीत हम आपकी नजर कर रहे हैं।
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

0: हेलो।
1: हाँ जी,
0: हाँ जी सर, नमस्कार सर।
1: जी नमस्कार
0: सर, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से सर।
1: हाँ लोकेंद्र वर्मा जी, कैसे हैं?
0: जी सर, आज बिल्कुल सर जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, आप सुनाइए।
1: बस आपकी आवाज से ही लग गया कि माहौल जो है अब जबरदस्त होने को है। आपकी बहुत सारी जानकारियां जो है आपकी जुबान से हम सुनेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: कैसी तैयारी चल रही है आपके उज्जैन में सावन के इस महीने में पूजा पाठ की?
0: सावन के महीने में सर जी, अब ये उज्जैन तो ऐसे ही अब सिंहस्थ पर्व आने वाला है 2028 में
1: जी,
0: इसको भी देखते हुए उज्जैन के अंदर काफी विकास हो रहे हैं, और अभी सावन महीना आने वाला है, इसमें महाकालेश्वर जी का मंदिर है
1: जी।
0: तो उस प्रांगण को मतलब काफी अच्छा सजाया जाता है, और सब जगह से आवागमन की सुविधा सबको महाकाल मंदिर तक उपलब्ध हो, उसके लिए सभी मार्ग को तैयार किया जा रहा है कि किसी को भी असुविधा न हो मंदिर तक पहुँचने के लिए।
1: सावन के महीने में गुरु पूर्णिमा भी आने को है?
0: जी जी जी,
1: पहले तो गुरु पूर्णिमा ही आती है, उसके बाद सावन शुरू हो जाता है।
0: जी जी,
1: तो आने वाले गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप अपने किसी गुरु शिक्षक या मार्गदर्शक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
0: गुरु सबसे पहले तो क्या है कि सर, अपने जो गुरु होते हैं घर में, पहला जो कदम चलते हैं आगे जिंदगी का, वो सबसे पहले अपने माता पिता गुरु रहते हैं, उनसे ही हमें घर के पारिवारिक संस्कार और ये सब उनसे ही मिलते हैं
1: जी।
0: और दूसरे गुरु होते हैं हमने हमारे शिक्षक, जब हम स्कूल के अंदर जाते हैं
1: जी जी जी,
0: और हमारी पढ़ाई जो चालू होती है उसमें हमारे शिक्षक गुरु रहते हैं, क्योंकि वो हमें आने वाले भविष्य में शिक्षा का ज्ञान देते हैं
1: जी।
0: और फिर जब जैसे ज्यादा उम्र हो जाती है तो उसमें एक गुरु रहते हैं आध्यात्मिक गुरु, जो
1: हाँ
0: विचारों का आदान प्रदान होता है, संस्कार और जो भगवान की स्तुति है उसका ज्ञान देते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं।
1: तो आप इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सबको नमन करते हैं?
0: करना चाहिए, नमन करना चाहिए, और खास करके हमारे उज्जैन में यहाँ पर कृष्ण भगवान जी और सुदामा जी ने 64 दिन की पढ़ाई की थी इस सांदीपनी आश्रम में, यहाँ वो आश्रम भी है उज्जैन में।
1: अच्छा,
0: प्रसिद्ध है ये सर।
1: तो इस खास दिन में वहाँ भीड़ होती होगी, काफी लोग जाते होंगे दर्शन करने?
0: हाँ जी सर, जाते हैं ना बिल्कुल, हमेशा मतलब वहाँ तो पूरे साल ही मतलब सभी दर्शन करने के लिए जाते हैं, और खास करके विशेष गुरु पूर्णिमा के दिन उज्जैन के दर्शनार्थी तो जाते ही हैं, और बाहर से भी जो उज्जैन में महाकालेश्वर दर्शन करने के लिए आते हैं वह भी जाते हैं वहाँ।
1: जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा लोकेंद्र वर्मा जी, कि हम आंखें खोलते हैं इस संसार में जब हमारी किलकारियां गूंजती है, तब से गुरु जो है हमारे साथ ही होते हैं, है ना, हर क्षण हर पल वो हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो जिंदगी है वो बदलती है एक अच्छे मार्गदर्शक के होने की वजह से। आपकी बातें बड़ी अच्छी लगी। अब कौन सा गीत आप पसंद कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में सुनने?
0: गाना सर, अब जैसे उज्जैन में महाकालेश्वर जी का स्थान है सत्यम शिवम सुंदरम
1: जी,
0: उसका एक गीत है ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है।
2: सत्य

0: हेलो, फोन इन चाहत
1: जी। सर मैं कृष्ण कुमार नेताम, जिला कुंडागांव, ग्राम भाड़गांव से बोल रहा हूँ सर।
0: कृष्ण कुमार नेताम जी, कैसे हैं आप?
1: जी सर मैं तो ठीक हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। ये बताइए कि फोन इन चाहत में आपका ये पहला कॉल या इससे पहले भी बात हुई आपकी?
1: जी सर ये पहला कॉल तो नहीं है सर, लेकिन 2 या 3 साल के बाद आज लगा सर। मतलब पहले लगा था सर, 2-3 साल के बाद आज लगा। बहुत कम लग पाता है सर, बहुत प्रयास करने के बाद।
0: अच्छा, प्रयास आप हमेशा करते हैं लेकिन कॉल आज लगा ऐसा है?
1: जी ऐसे पहले तो बहुत कॉल लग चुके हैं
0: जी,
1: अभी थोड़ा सा 2-3 साल के बाद आज थोड़ा हो रहा है।
0: इन 2-3 सालों में हमारे साथ बहुत से नए श्रोता भी जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। हाँ, वो भी ये जानना चाहेंगे भाई कि ये कृष्ण कुमार जी करते क्या हैं।
1: जी सर मैं तो एक दृष्टिबाधित छात्र हूँ, पढ़ाई करता हूँ
0: जी।
1: अभी मैं इस वर्ष फाइनल ईयर में जाऊँगा।
0: कौन से सब्जेक्ट को लेकर आप पढ़ रहे हैं?
1: जी सर मैं बीए कर रहा हूँ सर, तो मैं राजनीति और समाजशास्त्र और हिंदी से।
0: अच्छा
1: सर,
0: अच्छी बात है, तो पढ़ाई अच्छी चल रही है आपकी?
1: जी सर, और मैं बताना चाहता हूँ सर, यूपी में पढ़ाई करता हूँ, चित्रकूट जगतगुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग राज्य।
0: अच्छा, मतलब ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है?
1: यस सर।
0: वहाँ आप पढ़ाई करते हैं?
1: जी सर।
0: तो आपको रेडियो सुनने का मौका मिलता है वहाँ?
1: जी सर मौका मिलता है सर, और बहुत अच्छा लगता है मेरे को रेडियो।

0: सुनना।
1: रेडियो सुनना आपको बहुत अच्छा लगता है
0: जी सर? मेरे को लगे या ना लगे, लेकिन फोनिंग चाहत पर फोनिंग लोग रहे, ढलीवाण ये सब मैं सुनता हूँ सर।
1: आप सुनते ही हैं, अच्छी बात
0: जी,
1: है।
0: पिछले हफ्ते में सुना था मैं आपका, जो एक पंजाब वाले से बात कर रहे थे तो आप पंजाबी में बोल रहे थे सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी। मतलब आपने ये बता दिया कि आप सचमुच फोन इन चाहत प्रोग्राम हमेशा सुनते हैं। हमारे कार्यक्रमों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है?
0: सभी तरह के अभी कार्यक्रम आते हैं तो सर सभी ठीक लगते हैं, पढ़ाई लिखाई से भी संबंधित रहते हैं और चल रहे हैं, युवा लोग कैसे रहना चाहिए इस समय सभी पता चलते हैं सर।
1: हाँ, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम जो है आपको सुनने को मिलते हैं। तो कृष्ण कुमार जी, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
0: सर फिल्म का नाम तो याद नहीं आ रहा सर, लेकिन गाना है दो अनजान अजनबी वाला सर। सर और मैं अपने दोस्तों का नाम लेना चाहता हूँ जो बस्तर संभाग से है, मान कुमार काम, रंजित नेताम, रविन्द्र नेताम, विवेक नीलकंठ, मुन्ना नाग और गौचरण बघेल, इतने साथी जो हमारे बस्तर संभाग से अभी यूपी में अध्ययनरत हैं सर।
1: तो आपके दोस्त

0: अनुकुमार काम, रंजीत नेताम, रविंद्र नेताम, विवेक नीलकंठ, मुन्ना नाग और गौचरण बघेल, इतने साथी जो हमारे बस्तर संभाग से अभी यूपी में अध्ययनरत हैं सर।
1: तो आपके दोस्त
0: चरण बघेल, इतने साथी जो हमारे बस्तर संभाग से अभी यूपी में अध्ययनरत हैं सर।
1: तो आपके दोस्त

0: ये था फोन इन चाहत कार्यक्रम। श्रोताओं, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 2221606 और दूसरा नंबर है 2226666 यानी 2221606 और 2226666। इन नंबरों से पहले जगदलपुर का STD कोड 07782 यानी 07782 जरूर लगाएं। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 3:30 बजे के बीच। जिन श्रोताओं के आज कॉल लग चुके हैं उनसे गुजारिश है कि वो 4 हफ्तों के पश्चात ही इस कार्यक्रम में कॉल करें। अब दीजिए हमें इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे फोन इन फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चाहत। प्रस्तुति थी मनिंदर सिंह देवगुन की और इस कार्यक्रम की संयोजिका थी चंद्र ऋषि ठाकुर। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 11:30 बजे हैं।
2: सुनो ना।
3: हाँ।
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए लोक गीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में सहदेव कश्यप और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में सहदेव कश्यप और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में आप सुन रहे थे सहदेव कश्यप और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 11:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। कल से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा और जशपुर जिले के तपकरा के बीच हुई भिड़ंत में 2 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल 13 जुलाई से शुरू होगा। 17 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान वित्तीय कार्य के साथ अन्य शासकीय कार्य भी संपादित किए जाएंगे। इस बीच मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की अध्यक्षता में आज रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। देशभर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देशभर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। बस्तर जिले के भानपुरी वन परिक्षेत्र के फरसागुड़ा गांव में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए ट्री एटीएम का शुभारंभ किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष देवती कश्यप ने इसका उद्घाटन किया और निःशुल्क पौधारोपण वितरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने लोगों से अधिक पौधे लगाने और एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़कर पौधों के संरक्षण का आह्वान किया। राजधानी रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में एमबीबीएस की सीटों की संख्या बढ़ाने की अनुमति एनएमसी से मिल गई है। चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड की ओर से जारी अनुमति पत्र के अनुसार शैक्षणिक

शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कॉलेज की एमबीबीएस सीटों की संख्या 230 से बढ़ाकर 250 कर दी गई है, यानी कुल 20 नई सीटों की बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने राज्य में मनोचिकित्सकों की कमी को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। डिवीजन बेंच ने राज्य में मनोचिकित्सकों के खाली पदों पर जल्द से जल्द भर्ती करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया है कि वह मनोचिकित्सकों के 6 रिक्त पदों के लिए तुरंत विज्ञापन जारी करे। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास कल एक मालगाड़ी का वैगन पटरी से उतर गया। घटना शंकरनगर रेलवे ओवरब्रिज के नीचे डाउन लाइन पर हुई। राहत की बात यह रही कि मालगाड़ी की रफ्तार बेहद धीमी होने के कारण बड़ा रेल हादसा टल गया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार घटना का असर ट्रेनों की आवाजाही पर मामूली रूप से पड़ा है। परिचालन को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और ट्रैफिक बहाली का कार्य लगातार जारी है। जशपुर में तपकरा वन थाना क्षेत्र के अंतर्गत उड़ीसा कुनकुरी मार्ग पर लवाकेरा के पास शनिवार को एक तेज रफ्तार हाईवा और कार के बीच आमने सामने से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सरगुजा जिले के मैनपाट में कल दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने से हुई टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य हादसे में अंबिकापुर सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 43 में सेदम के पास मोटरसाइकिल से जा रहे एक दंपति को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौत हो गई और उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। देशभर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा और जशपुर जिले के तपकरा क्षेत्र में हाईवा और कार के बीच हुई भिड़ंत में 2 लोगों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: से करवाइए विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 12:35 हुए हैं। रूसरूसा कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लोक गाथा सुलोचना सोसी सेना भाग 3। गायिका हैं बेलमती नाग और रेमे।

0: रूसरूसा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे लोक गाथा सुलोचना सोसी सेना का भाग तीन। गायिका थी बेलमती नाग और रेमी। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, लोक गाथा का अगला भाग अगले शुक्रवार को प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 12:30 बजे हैं। प्रस्तुत है शहरी महिला बहनों का अपना कार्यक्रम घर आंगन।

नमस्कार बहनों, एक बार फिर हैं हम साथ साथ अपने पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन की आज की इस कड़ी में। आज की इस कड़ी में मैं आपकी अपनी रेडियो साथी मंजुषा हूं आपके साथ कुछ बातों को लेकर के। तो बहनों बताइए कैसे हैं आप? जी हाँ, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। बहनों, हम सबके जीवन जीने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। कहीं हम सफल होते हैं, कहीं हम निराश होते हैं। जीवन में कई चुनौतियां खड़ी रहती हैं जिसका सामना हम सभी अपनी समझ बूझ से करते हैं। पर आज के इस दौर में सभी परिवारों में एक बहुत बड़ी चुनौती है जिससे हम सब जूझ रहे हैं, और वो है बच्चों की परवरिश की नई चुनौतियां। जी हाँ बहनों, आज के समय में बच्चों की परवरिश पहले की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। ये शायद इसलिए कि समय बहुत तेजी से बदलता जा रहा है।

और बच्चों के साथ साथ अभिभावकों के लिए भी सब कुछ मानो नया है और उन्हें भी सीखने की जरूरत पड़ रही है कि ऐसे हालातों से कैसे निपटा जाए, और यही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। आज के युग को डिजिटल युग कहते हैं और इस डिजिटल युग में रहने का असर बच्चों पर इतना ज्यादा पड़ रहा है कि माता पिता परेशान हैं कि बच्चों को फोन से दूर करें तो कैसे करें। आजकल ज्यादातर परिवारों में माता पिता कामकाजी होते हैं क्योंकि जीवन व्यापन के लिए ये भी जरूरी हो गया है। बच्चों के लिए माता पिता घर से बाहर काम करने निकलते तो हैं, पर इस कारणवश बच्चों को माता पिता के साथ की कमी होती जा रही है, जिससे बच्चा अपना ज्यादा समय फोन देखने में लगा देता है और उसकी स्क्रीन टाइमिंग बढ़ती जाती है। ऐसे में बच्चों में शारीरिक तकलीफें बढ़ती जा रही हैं, जो आंखों से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे मानसिक रूप से भी परेशानियां बढ़ने लग रही है। अकेलेपन के शिकार हुए ये बच्चे जिद्दी होने लगते हैं। बहनों, आज के इस रफ्तार भरी जीवन में शिक्षा का दबाव, तुलना करना, पीयर प्रेशर, सोशल मीडिया में बने रहने की दौड़, ऐसी कई सारी बातें हैं जो कि बच्चों से जुड़ी हुई है। गलत जानकारी, गलत संगत बच्चों के व्यवहार और आत्मविश्वास को प्रभावित करते हैं। अगर देखा जाए तो सभी परिवार बदलती जीवन शैली, जिसमें नैतिक मूल्यों और संस्कारों में कमी, इंटरनेट का दुर्प्रभाव, मानसिक तनाव, अकेलेपन की बढ़ती समस्या, संयुक्त परिवार की कमी, परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने की कमी, ऐसी कई समस्याओं का सामना आज के माता पिता कर रहे हैं, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। बच्चों में बढ़ती जिद, अपनी इच्छाओं को पूरी करने की अपेक्षा और इन इच्छाओं के पूरा ना होने पर उनके दिमाग में माता पिता के प्रति बनने वाली सोच, जो कि नकारात्मक होती जा रही है, उन्हें अपने परिवार से दूर ले जाती है।

और इन इच्छाओं के पूरा ना होने पर उनके दिमाग में माता पिता के प्रति बनने वाली सोच जो कि नकारात्मक होती जा रही है उन्हें अपने परिवार से दूर ले जाती है

हमारे सब कुछ हैं। कहने का मतलब ये बहनों कि बच्चों की परवरिश का सबसे प्रभावी तरीका है प्रेम, धैर्य, संवाद, थोड़ा सा अनुशासन और सकारात्मकता से उनका मार्गदर्शन करना। अपने काम से वापस आने के बाद जितना ज्यादा समय मिलता है पूरा बच्चों के साथ बिताएं। उस समय मोबाइल फोन अपने से दूर रखें। जी हाँ, अपना फोन भी और बच्चों का फोन भी। उनसे खुलकर बातें करें। खुला संवाद बनाने में बच्चे आपसे सब कुछ शेयर करने लगेंगे। अपनी समस्याएं, अपने जीवन के सभी खास पलों को वो आपसे बांटने लगेंगे। एक बहुत जरूरी बात बहनों, बच्चों की रुचि और क्षमता को समझें और उनके सभी प्रयासों की तारीफ करें, सराहना करें, उनकी भावनाओं को समझें, उन्हें प्रोत्साहित करें और जरूरत पड़ने पर उन्हें सलाह दें और उन्हें ये भी एहसास दिलाएं कि उनसे भी हम सलाह ले रहे हैं। बहनों, हमें बच्चों को ये समझाने की जरूरत है कि आजकल की दुनिया में सबसे पहले अपने आप को संभाल कर रखना है। क्या सही है, क्या गलत है, उसकी परवाह, उसकी परख करना सिखाना है और अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करने की राह पर चलना भी सिखाना होगा। उन्हें ये एहसास दिलाना है कि वो हमारे लिए सब कुछ हैं और उनसे ही हमारा जीवन है, इसलिए उनका खुश रहना बहुत जरूरी है और इसके लिए उन्हें अच्छी शिक्षा लेनी होगी और आत्मनिर्भर बनना होगा। चुनौतियों का सामना करना होगा, कोई भी नकारात्मक फैसला ना ले इसका ध्यान रखना होगा और अगर ऐसी कोई भी समस्या आती है तो उनके माता पिता उनके साथ हमेशा हैं, इस बात का एहसास दिलाना होगा। बहनों, मुझे लगता है कि इस बारे में जितना भी बात करें कम है। इस विषय में आगे और भी होगी बातें, पर आइए सुनते हैं इस समय फिल्म खून भरी मांग से आशा भोसले की आवाज में ये गीत।

0: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
2: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
6: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
5: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
6: तो फिर सही नंबर
5: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
6: आपने तो बचा लिया दीदी।
5: काम से नहीं।
7: RBI कहता है,
8: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
9: बहनों, बच्चे अपनी माँ से बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। उनकी माँ उनकी सब कुछ होती है और हमें भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम अपने बच्चों के लिए एक आइडल हैं। तो क्या बहनों, आप अपने बच्चों के लिए सुपर मॉम बनना चाहेंगी? मैं समझती हूँ कि हम सभी माएं अपने बच्चों के लिए सुपर मॉम जरूर बनना चाहेंगे। तो ये कैसे हो पाएगा, ये बताएंगी हमें सुनैना यादव इस वार्ता में। क्या आप भी बनना चाहती हैं सुपर मॉम?
10: मल्टीटास्कर बनने की चाहत केवल पुरुषों में ही नहीं, महिलाओं में भी हावी हो रही है। इसके चलते वे सुपर मॉम बनने की होड़ में क्षमता से अधिक कामों का बोझ अपने ऊपर ले लेती हैं। परिणाम यह होता है कि धीरे धीरे सुपर मॉम सिंड्रोम के शिकार हो जाती हैं। यह सिंड्रोम उनके स्वास्थ्य के लिए ही नुकसानदायक साबित नहीं होता, बल्कि जीवन तनावग्रस्त बना देता है। हालांकि आज के दौर में बहुत सी माओं को अपने लिए सुपर मॉम का संबोधन सुनना सुखद और फैशनेबल लगता है, लेकिन सच यह है कि ये शब्द उनको कई तरह की समस्याओं के जाल में उलझा रहा है। खुद को हर मोर्चे पर साबित करने की कोशिश में महिलाएं इतनी ज्यादा जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती हैं कि एक समय के बाद तनाव, सिर दर्द, थकान सुपर मॉम की स्थायी समस्या बन जाती है और आगे चलकर वे सुपर मॉम सिंड्रोम की गिरफ्त में आ जाती हैं। आप यही सोच रहे होंगे कि सुपर मॉम सिंड्रोम आखिर है क्या, तो आइए जानते हैं सुपर मॉम सिंड्रोम के बारे में। हर जगह अपने को परफेक्ट साबित करने में लगी हुई आज की बहुत सी महिलाएं सुपर मॉम सिंड्रोम की गिरफ्त में आकर तनाव, अनिद्रा, अवसाद, निराशा और अकेलेपन जैसी समस्याओं से घिर जाती हैं। इससे उनकी सेहत प्रभावित होने लगती है। इस बारे में मनोवैज्ञानिकों का कहना है, सुपर मॉम सिंड्रोम में खासतौर पर नौकरी पेशा माएं जूझ रही हैं। घरेलू काम के साथ ही पेरेंटिंग के सवाल पर भी वे अपराध बोध से ग्रस्त रहती हैं।

मानसिक और भावनात्मक परेशानियां हो रही हैं। अगर आप भी वर्किंग हैं और हमेशा थकान या दबाव महसूस करती हैं, अपने कामों को ठीक ढंग से पूरा न कर पाने पर अपराध बोध से ग्रस्त रहती हैं, घरेलू समस्याएं आपके दिमाग पर हमेशा हावी रहती हैं, तो इसका मतलब है कि सुपर मॉम सिंड्रोम ने आपको जकड़ रखा है। करियर और परिवार के बीच बेहतरीन तालमेल बनाने की कोशिश और खुद को बेस्ट मॉम साबित करने की होड़ आज कामकाजी महिलाओं की सेहत पर भारी पड़ रही है। यह कोशिश महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार करती है। अब तो यह समस्या बड़ी होती जा रही है, क्योंकि महिलाओं को पता ही नहीं चलता कि वो किसी बीमारी की चपेट में है। 20-30% वर्किंग मदर्स इस सिंड्रोम के गिरफ्त में हैं। महिलाएं हमारे समाज परिवार की धुरी होती हैं, लेकिन यह चिंताजनक स्थिति है कि उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। यह जिम्मेदार माँ साबित होने की जद्दोजहद में जुटी हुई इन महिलाओं के पास सभी के लिए समय है, लेकिन खुद की देखरेख के लिए समय ही नहीं है। वो गृहिणी भी है और एक सफल कामकाजी महिला भी, देखने और कहने को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की मालकिन, एक सुपर मॉम। लेकिन सुबह सबसे पहले बिस्तर छोड़ने और रात को सबके बाद अपने आराम की सोचने वाली सुपर मॉम की सेहत का सच दर्दनाक है। आंकड़े बताते हैं, बीते कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार से जुड़े गैर सरकारी संगठन ने विश्व की माओं की स्थिति पर जो रिपोर्ट जारी की है, उसमें भारत को 76वां स्थान दिया गया। सेहत के मामले में भारत को इतना नीचे स्थान मिलना भारतीय महिलाओं की सेहत का सच बयां करता है। यह सच इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि आजादी और तरक्की के नाम पर भारतीय महिलाएं जरूरत से ज्यादा बोझ ढो रही हैं, जिस कारण वे अनेक बीमारियों की गिरफ्त में आ रही हैं। और आमतौर पर इस तरह की समस्याएं माँ बनने के बाद ही शुरू होती हैं, क्योंकि माँ बनने के बाद जिस तादाद में एक महिला की भागदौड़ बढ़ती है, उस मात्रा में वह पौष्टिक भोजन नहीं लेती है। एक आम कामकाजी महिला के लिए दिन भर में 2200 कैलोरी लेना जरूरी है, जबकि वह स्वयं को औसतन 1400 कैलोरी ही दे पाती है। आज कामकाजी माओं का एक बड़ा प्रतिशत अनिद्रा, तनाव, अवसाद, हाइपरटेंशन से जुड़ी समस्याओं से ग्रस्त है। मौजूदा दौर में 88% माएँ लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों की शिकार हैं। 88% कामकाजी माएँ तनाव और अवसाद से जुड़ी समस्याओं का शिकार हो रही हैं। दोहरी जिम्मेदारियां निभाने के कारण उन्हें हार्मोनल असंतुलन का भी सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण उन्हें अनियमित मासिक धर्म हो रहा है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि 30% से ज्यादा तनाव के मामले ऐसे हैं जिसमें अनियमित दवा लेने की आवश्यकता है। healthz.com द्वारा करवाए गए सर्वे में सामने आया है कि 30 से 45 साल की 80% महिलाएं मोटापे का शिकार हैं। देखा जाए तो महिलाओं के बिगड़ते स्वास्थ्य के पीछे हमारी सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था, कामकाजी माओं को भी घरेलू दायित्वों और सामाजिक सरोकारों के निर्वहन में कोई छूट नहीं देती है। नतीजा, महिलाओं को हर फ्रंट पर खुद को बार बार साबित करना पड़ता है। हमारे समाज में बच्चों की सारी जिम्मेदारियां माँ के ऊपर ही रहती हैं। इस आपाधापी में अगर कुछ नज़रअंदाज होता है तो वो उनकी सेहत। इसमें आप खुद को दोषी ना माने। अगर आप सुपर मॉम सिंड्रोम से बचना चाहती हैं, तो हर काम को परफेक्शन के साथ करने का जुनून ना रखें, क्योंकि ऐसा करने पर किसी प्रयास में जरा भी कमी होने पर आप डिप्रेस हो सकती हैं। इसीलिए इससे बचने का प्रयास करें। समझदारी इसी बात में है कि खुद को सिर्फ मॉम समझें, सुपर मॉम नहीं। हर माँ अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करती हैं। जो माएँ घर में रहती हैं, उनके काम में भी कई बार कमी रह जाती है। इसलिए कामकाजी महिलाएं खुद को दोष ना दें, क्योंकि ऐसा करके आप अपने प्रयासों को भी कमतर कर देंगी। यह मान लें कि आप सभी काम एक साथ परफेक्टली नहीं कर सकती हैं। कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाना बड़ी बात नहीं है। इसलिए खुद को दोषी ना ठहराएं और अपनी स्थिति से संतुष्ट रहना सीखें, क्योंकि सुपर मॉम की इमेज को पाने की चाह रखने वाली महिलाएं अपराध बोध के चलते भी कई मनोवैज्ञानिक समस्याओं का शिकार बन रही हैं। असल में हमारा सामाजिक परिवेश भी इनके इस अपराध बोध को बढ़ावा देता है। उनकी कोशिशों को नज़रअंदाज कर उन्हें उनकी खामियां गिनाई जाती हैं। घर, दफ्तर और बच्चों की देखभाल में जब मनचाहा तालमेल नहीं बैठता, तब भी महिलाएं तनाव का शिकार बन जाती हैं। कई शोध यह साबित करते हैं कि पुरुषों के मुकाबले शारीरिक और भावनात्मक परेशानियों से महिलाएं ज्यादा टूटती हैं। मनोवैज्ञानिक भी यही मानते हैं कि जब महत्वाकांक्षाएं अधिक होती हैं,

0: अपराध बोध भी ज्यादा होता है, इसलिए आज के माओं का स्वास्थ्य ज्यादा प्रभावित हो रहा है। साथ ही सपोर्ट सिस्टम की भी कमी देखने को मिलती है। भारत में कामकाजी माओं के लिए तकलीफदेह बात यह है कि घर हो या बाहर, उन्हें सहयोगी वातावरण नहीं मिलता। दफ्तर में अपने काम को पूरा करने और घर में जिम्मेदारियों को निभाने के अलावा भी उन्हें अनगिनत तकलीफों से दो चार होना पड़ता है। उन्हें ऐसा सपोर्ट सिस्टम ही नहीं मिल पाता जो उनके काम को आसान करे। असल में हमारे यहाँ महिलाओं के लिए किसी तरह का कोई सपोर्ट सिस्टम बना ही नहीं है। दूसरी महिलाओं का स्वास्थ्य और सुरक्षा भी आपस में जुड़े हुए मुद्दे हैं। वर्क प्लेस पर महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं, जिसके चलते वे आमतौर पर अनचाहा तनाव झेलती हैं। यह माहौल सीधे सीधे उनकी सेहत को भी प्रभावित करता है, लेकिन महिलाओं को इन सब प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। अगर वे इसे चूकती हैं, तो यही उनकी राह में बड़ी बाधा होगी, और ऐसी बाधा जो आपको कमजोर बनाए, ऐसा आप कभी नहीं चाहेंगी। तो हमेशा अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए और सही मायनों में एक स्ट्रांग वुमेन बनिए, क्योंकि एक स्ट्रांग वुमेन ही सुपर मॉम बन सकती है। ओवर प्रेशर भी आपको सुपर मॉम बनने से रोक सकता है। आपके परिवार के सभी मेंबर्स और बच्चों को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप उनकी फिक्र करती हैं। अपने वर्कलोड के बारे में बच्चों को भी बताएं। जब वो जान पाएंगे कि माँ कितनी परेशानियाँ उठा रही हैं, घर की जिम्मेदारियाँ पूरी करती हैं, तो आपकी मुश्किलें समझ पाएंगे और आपकी मदद भी करेंगे। हालांकि अगर बच्चे छोटे हैं तो आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में घर के दूसरे सदस्य की भी मदद लें। घर के कामों के लिए मेट भी रख सकती हैं। जरूरी नहीं है कि हर काम आप ही करें, अपने पति की भी हेल्प ले सकती हैं। इस तरह आप टेंशन से दूर रह सकती हैं। आप अपनी प्राथमिकताएं भी पहले तय कर सकती हैं। अगर आप चाहती हैं कि सुपर मॉम सिंड्रोम आपको प्रभावित ना करे, तो सबसे पहले सुपर मॉम बनने की ख्वाहिश बंद कर दें। इसके बाद खुद की प्राथमिकताएं तय करें। इससे आपका हर काम ठीक ढंग से होगा। अपने हर काम की लिस्ट बना लें। इससे आपको कोई भी काम करने में आसानी होगी, क्योंकि एक ही काम एक ही समय में अच्छे से किया जाना थोड़ा मुश्किल है। मेरा मानना है कि स्वयं महिलाओं को यह स्वीकार करना होगा कि वे हर जगह परफेक्ट नहीं हो सकती। अगर वे वर्किंग हैं और अपने बच्चों को पूरा समय नहीं दे पा रही, तो इसमें ग्लानि महसूस ना करें। जितना भी समय आप दे पा रही हैं, उससे भरपूर देने की कोशिश करें। कहने का मतलब है कि जो आप हैं वही रहें, क्षमता से अधिक बनने की कोशिश ना करें, तभी आपकी लाइफ में बैलेंस बना रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि महिलाएं खुद को समय जरूर दें। सिंड्रोम से बचने का एक ही रास्ता है, तमाम कामों और दबावों के बीच थोड़ा समय अपने लिए भी जरूर निकालें। यह थोड़ा सा समय जिसमें आप खुद को खुशी और संतुष्टि देने के लिए कुछ करें। किसी हॉबी का सहारा भी ले सकती हैं, जैसे डांस, म्यूजिक, एक्सरसाइज, पेंटिंग या राइटिंग। जिंदगी की भागदौड़ के बीच अपनी पसंद, शौक और खुशियों को जीना ना भूलें। खुद के लिए समय निकालना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब तक आप स्वयं खुश नहीं होंगी, तो दूसरों को खुश कैसे रख पाएंगी। समझने वाली बात यह है कि तमाम कामों को करते हुए भी हमेशा अच्छे मूड में रहें। सबको खुश करने के साथ ही खुद को खुश रखें और अपनी भी देखभाल करें, तभी आप अपने घर परिवार, ऑफिस के काम और बच्चों की देखभाल ठीक से कर पाएंगी, उन्हें खुश रख पाएंगी और कहलाएंगी सुपर मॉम नहीं, लविंग मॉम।
1: सच में बड़ी अच्छी बातें सुनैना यादव जी ने हमें बताई इस वार्ता में। क्या आप भी बनना चाहती हैं सुपर मॉम? हम जरूर उनकी कही हुई बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे। तो भाइयों बहनों, अब सुनते हैं ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म बर्फी से, श्रेया घोषाल की आवाज में। पर उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोजे शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम जो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक, तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782222

0: फोनिन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने
1: जीएसटी चो दर के कम कर लो ने सोझे मनुख जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से बल्कि जनावर मंचो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे जीएसटी ले वेटनरी सर्जिकल चो सामान सस्ता होली से नुआ कीमत ले सामान बना तो लोग और घेन तो लोग दोनों के लाभ मिले दे ये नुआ जीएसटी दर 22 सितंबर 2025 ले लागू हो दे
2: सो बिड़किन बिड़िया राहत तिंदनत उंडना सामान तलाय दरकता डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मायो इदेन संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोलावेंट कम की सित तोड़ अदेन के इलाज तलाय खर्चावेंट कम लगे माता जीवन बीमा तगवेंट इंजे जीएसटी छूट दरकिता अदेन के पॉलिसी पोईतनत इंजे सस्ता आंता सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता पोटरो गाड़ी ता पर्रो 28% जीएसटी मत्ता अद कम मास इंजे 18% अत्ता इदेन मतलब इद की इंजे गाड़ी पोटरो गाड़ी असित के सस्ता दोर कीता

जी हाँ बहनों, इसी के साथ जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों के साथ भरपूर समय बिताएं, उन्हें ढेर सारा प्यार दें, अपना ख्याल रखें, हेल्दी खाएं। और कार्यक्रम की अगली कड़ी तक आज की इस कड़ी से मुझे यानी कि मंजुषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे शहरी महिला बहनों का अपना कार्यक्रम घर आंगन, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजे हैं। अब समाचार हम दिल्ली से रिले कर रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया

0: के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
1: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज
0: और मजबूत हुए हैं।
1: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज

0: आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का भी शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने ले मिन हुन ने फूकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। शेख हमद ने क्षेत्रीय परंपरा को तोड़ते हुए 2013 में स्वेच्छा से अपने पुत्र को सत्ता सौंपने से पहले 18 वर्षों तक कतर पर शासन किया। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गो हानयू और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लादेनोवा की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रिएला ड्रबोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कृषि समय की बेड़ा खड़ा चौगोट का पुनः प्रसारण।

दिदीमान मुरै के तो आमी सफाय जानू से पंडरा अरु लुसलुसला मुरै चो जड़ अरु भाजी दोनों के खातों का जे लोग मन खूबे मन कर सो आज आमी मुरै चो उन्नत कमानी कसन करुक सकू ये गोट के करू से मुरै चो कमानी का जे बालुई दोमट माटी निको होए से मुरी चो बीजा मंडा तो पहिल बेड़ा के दुई तीन हार खापून पाटा चलान माटी के बराबर कर तो रहे मुरै चो उन्नत किस्म मन ने एशियन अरु यूरोपियन किस्म मन होए से एशियन किस्म ने पूसा चेतकी पूसा हिमानी जौनपुरी हिसार मुरई अरु पंजाब सफेद होए से असने यूरोपियन किस्म ने व्हाइट आइसिकल रैपिड रेड व्हाइट टिप्ड अरु फ्रेंच ब्रेकफास्ट नाचो किसी मन होए से मुरई चो बीजा मंडातो का जे अढ़ाई एकड़ ने आम के 5 ले 10 किलो बीजा के लगातो राय असन तो मुरई के आमी साल भर बल कमाउक सकू मांतर सितंबर ले जनवरी महीना भीतर एचो जोन बुंतोर समय निको माने जाए से मुरई चो कमाने के लेन बार अरु पारी ने बले करुक सकू बलो ने एचो जोन बुंतोर वाटा है हुन आमी एके बेड़ा ने लेन बार लेन बनाउन बल करुक सकू अरु आमी किडिक डेंग पारी बनान हुथा पर बुनुक सकू लेन वार बुनलो बुनतो काजे नहीं आम के जो लेन ले लेन चो दूरी आए हुनके 30 सेंटीमीटर राखतो राय अरु पारी ने आमी जसन एके जेचो कमानी करतो मन करू से जाले आम के हुन जो नए पारी के 15 ले 20 सेंटीमीटर खिंडिक देर डेंग बनातो रहे और डेंग पारी ने एके बूंतो रहे कहीं कमानी हो दादा दीदी मन दखा आम के खत भात केवल हिसाब ले दिलो ने

कॉलोनी करनाल से इस गीत को सुनना चाहा है गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बीबी मनमीत और मनविंदर सिंह पांधा। श्री जिला हिंगोली से आप हैं रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिंकू इंगोले, रमाबाई, सुरेंद्र इंगोले, मयूरी सुरभि, मंजिशा गौतम इंगोले। निजामाबाद से आप हैं शेख उल्लाह बख्श, बेगम राबिया, अशोक नगर बासमत से। महाराष्ट्र से आप हैं पार्वती सखाराम ठोके, दीपाली राजू ठोके, रोहित सोनू मोनू ठोके। नागेश्वर नगर पूना से आप हैं शेष राव बोबड़े और देवराव बोबड़े। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश का ये गाना।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
2: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की 4 दरें लगती हैं। 1000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि 1000 से 2499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2500 से लेकर 7499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा।
3: श्रोता सुमन कार्यक्रम का अगला गाना हम आपके लिए लेकर आए हैं तेरे नाम फिल्म से। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने। सुनने की चाहत करते हैं आप सभी श्रोता। मालेगांव से आप हैं सुनीता बाई घायाल, सानिका घायाल, गजानन घायाल। खंडवा ग्राम लोहारी से रमेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे। मानपुर से आप हैं विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। दिल्ली शहर से आप हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। भाटापारा से आप हैं मोतीलाल झेरिया, कल्पना झेरिया, बिट्टू कुमार झेरिया, चिंटू झेरिया।

कामले, गोलबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद रोहित और मोहित, अनारकली बाजार जगराव से आप है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बीबी गव्या मल्होत्रा और भाई सुच्चा पाठक। परसा टोला छत्तीसगढ़ से आप हैं ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, खुमेंद्र मसिया, तुषारणी मसिया। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से आप हैं रिजवान खान, आशिया खान, सबिहा, अनस और रेहान। घंटाघर चौक खंडवा से आप हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। बेमेतरा से आप हैं भाई भरतलाल सिन्हा और लव कुमार और लक्की सिन्हा। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश का ये।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है। कार्यक्रम का अगला गाना हम आपके लिए लेकर आए हैं अपना देश फिल्म से। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, गीत की रचना की है आनंद बख्शी ने और संगीत है राहुल देव बर्मन्ना का। सुनने की चाहत रखते हैं आप सभी श्रोता साथी। अस्पताल रोड केंद्रीय विद्यालय सागर मध्य प्रदेश से आप हैं चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक और तन्वी गौहर। महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और रागिनी यादव। पन्ना मध्य प्रदेश से कौशल किशोर, संगीता हर्षित और वैभव मट्टू। इसी गीत को सुनने की चाहत रखते हैं भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर, सोनडीही से सुब्रत चौधरी, बेबी अनिशा और रायपुर से नीलू मेघ, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दरजुरा से फिरंता साहू, दुलोरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू, दरजुरा से ही आप हैं ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू। सतोषा करपाउंड से इस गीत को सुनना चाहते हैं गेनूराम बघेल, गोमती बघेल, तनुजा बघेल, सुभाष बघेल और ईशान बघेल। महाराष्ट्र से बाबा साहब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानिरे और कार्तिक युवराज। बेरडी से इस गीत को सुना चाहा है राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवा सेरे। इस गीत को सुनना चाहते हैं खेपरा बाजार बालौद से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलौ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतरी बाई, गोमती बाई, गणेश धाम से आप सभी हैं। खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर और मोहम्मद उमर डावर। खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार। दीवाल से शंकर लाल गंगराडे, विनीता गंगराडे, छोटू पूजा, रोशनी अजय और वामिका गंगराडे। जिला खंडवा से ही आप हैं अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे।

पवार, दीवाल से शंकरलाल गंगराडे, विनीता गंगराडे, छोटू पूजा, रोशनी अजय और वामिका गंगराडे, जिला खंडवा से ही आप हैं अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे भूए और वामिका गंगराडे, जिला खंडवा से ही आप हैं अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे।

राजकुमार फिल्म से अगला गाना सुनिए। मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी के लिखे शब्दों को संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने। सुनने की चाहत रखते हैं आप सभी श्रोता साथी। कतियापारा जूना बिलासपुर से आप हैं सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश देवांगन, आशीष देवांगन, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा, आदित्य देवांगन। चाटीडीह से आप हैं गंगा देवी देवांगन, पूनम देवांगन, धनेश्वरी देवांगन, महेश्वरी देवांगन, कुमारी मिल्की देवांगन, बेबी मीनाक्षी और निधि देवांगन। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्पल देवांगन। भद्रसी से आप हैं पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन, खुशबू सेन। यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़से, विनोद खड़से। जेल रोड रायगढ़ से भाई नरेंद्र कुमार तिवारी। गुमला झारखंड से आप हैं एसएम जावेद, सगुफ्ता अंजुम। गोरबा बिलाईगढ़ से आप हैं देवलाल कर्श, कामनी कर्श और यश कर्श। ऊपर कोट बुलंदशहर से आप हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, सहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुजान, अरजान और अबान अब्बासी।

सी विदर्भ से संतोष खड़से और विनोद खड़से, अमरपुर पेंड्रा से रेखा देवी, श्वेता देवी और सुरुचि देवी श्रीवास्तव, सनावद से आप हैं दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार, कोरदा लवन से भूधर प्रसाद वर्मा, घनश्याम प्रसाद वर्मा, गुलशन कुमार वर्मा, शिव कुमारी वर्मा, हेमलता वर्मा और वेद किरण वर्मा, उत्तराखंड जसपुर से आप हैं रियायत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमीम, परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। बिजनौर से आप हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजिर परवीन और बिट्टू भैया। नेवसा खुपटी से आप हैं बंडू लोहार, पोपलघट माया, चंद्रकला पोपलघट, देवीदास पोपलघट। श्रीरामपुर भोकर से श्रवण पूजा, अनीता बिड़वे और हरी भाऊ बिड़वे। भाटापारा से आप हैं दान सिंह रावत, दानू, पद्मनी रावत, सुभम और सौरभ रावत। महासमुंद से आप हैं अदालत दास वैष्णव, मानसी शांति वैष्णव, ऋचा गायत्री वैष्णव, भीषम दास मानिकपुरी। राजस्थान से आप हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। लीजिए सुनिए आप सबकी फरमाइश का ये गाना।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में लीजिए अब सुनिए मिस्टर नटवरलाल फिल्म का गाना। आनंद बख्शी के लिखे इस गाने को संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने। सुनने की चाहत रखते हैं आप सभी श्रोता साथी। धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से आप हैं श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे और वैशाली बाठे। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। बालोद से मंगतूराम यादव, चित्ररेखा, साहिल, शिवम, केशव, माधव, पोषण, राकेश, रितेश, नेत्राम, सेतुराम और विजय। बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रामायण श्रीवास, रज्जू श्रीवास और हेमंत नामदेव। इंदौर से कुमारी देविका चौधरी, कविता संजय वाणी, मनीष खर्चे, गणेश कार्तिक भाई खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी। खंडवा से आप हैं शिवांश कुमार खंडाले, सुभाष खंडाले, मंदा खंडाले, राजेश कुमार खंडाले, अंजलि खंडाले, संदीप कुमार खंडाले, माधुरी खंडाले, पिंटू कुमार खंडाले, जयश्री खंडाले। गणेश पेठ पार्थडी से आप है अंबादास सिंधे, संगीता सिंधे, अनमोल अमृत और सुवर्णा सिंधे। नांदेड़ से आप हैं प्रकाश जैन, तिरुपति नगर लातूर से आप हैं संगीता जैन और सूरज जैन। जमशेदपुर से आप हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पम्मी भाटिया। लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश का ये गाना।

लीजिए अब सुनिए कामचोर फिल्म का गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। गीत कृष्णा की है इंदिवर ने और संगीत है राजेश रोशन का। सुनने की चाहत रखते हैं आप सभी श्रोता साथी। बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, सारागांव से सुजान वर्मा, सोहत्रा वर्मा, आयुष और कृत्य वर्मा। जिला भीड़ से आप हैं दिनकर साबले, गंगा साबले, सचिन साबले, संजय साबले और प्राजक्ता। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आशिया खान, हृदया खान, अस्मा सालिया, सोयब खान, पोतरा मुश्तबा खान, रऊफ भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग अकुला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा

कामले राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले। नांदेड़ से आप है नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़। नलेश्वर से आप है पीएस नहावकर, विशाल नहावकर। दुर्ग से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोर। आदर्श नगर मलोट से आप हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवांश शर्मा। मलकापुर से आप हैं संजय पाटिल, सौभाग्यवती, उषा पाटिल, प्रथमेश पाटिल, निवृत्ति, क्षीरसागर, सतीश सरफ और जगदीश तांबट। चांदनी चौक गंडई पंडिरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू और रविंद्र सेन। कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। सिग्मा से आप हैं रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी और कोमल यादव। झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश, कमल, सेतपाल, भूमिका और सुशीला दीदी। मधुबनी से आप हैं कुशेश्वर, कांति गुप्ता, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि सिद्धि गुप्ता। लखनऊ से आप हैं मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक गुप्ता और पंखुरी गुप्ता। गांधी चौक कांति निकेतन से मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्यांश गुप्ता, कोमल गुप्ता, मेनका गुप्ता, माधवी साध्वी, एम के गुप्ता, राजू गुप्ता और विनीता गुप्ता। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये सुरीला गाना।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए लाखों में एक फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने। सुनने की चाहत रखते हैं आप सभी श्रोता साथी। छत्रपति संभाजीनगर से आप हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से आप हैं देवशंकर तामोरिया, अजय देव, राधिका, तुषार तामोरिया, डॉली मास्टर अल कबीर, बीबी पूजा तामोरिया और प्रभा देवी तामोरिया। किकरीमेटा से आप हैं बेलहारी पाटन से संतोष शर्मा, रुक्मणी शर्मा, गुरमी शर्मा। डोंडी लोहारा बालोद से पीयूष नेताम, जोहात्री बाई नेताम, कोमल नेताम। जुनावनी दुर्ग से सुरित

पाटन से संतोष शर्मा, रुकमणी शर्मा, गुरमी शर्मा, डोंडी लोहारा बालोद से पीयूष नेताम, जोहात्री बाई नेताम, कोमल नेताम, जुनावनी दुर्ग से सुरित जोहात्री बाई नेताम, कोमल नेताम, जुनावनी दुर्ग से सुरित

और उनके साथी भाटापारा से ही आप हैं दान सिंह रावत दानू, पद्मनी रावत, शुभम सौरभ रावत और उनके परिवार के सभी सदस्य। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है जिला रायसेन खापरखेड़ा मध्य प्रदेश से तुलसीराम साहू, मुकेश कुमार साहू, हेमंत कुमार, आरती, ममता और गोमती साहू। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलबीर सिंह। बिजनौर से आप हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सास दरानी और हिना कौसर। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से इस गीत को सुनना चाहते हैं मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद असफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और निलोफर फातिमा। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये गाना और हरिप्रिया को दीजिए श्रोता सुमन कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रोता सुमन, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुनील वर्मा विद द मिड डे न्यूज। The headlines. India condemns attack on commercial vessel GFS Galaxy off coast of Oman. 10 Indians rescued, 1 reported missing. New Delhi expresses concern over continuing attacks on commercial shipping in the region. Prime Minister Narendra Modi returns to New Delhi after concluding several agreements during his visit to Indonesia

0: The semi-final, France and Spain, will face off on Wednesday. The match will kick off at 12:30 a.m. Indian Standard Time. France reached the semi-finals after defeating Morocco 2-0 in the quarter-finals, while Spain advanced with a hard-fought 2-1 victory over Belgium. The second semi-final will be played on Thursday between England and Argentina at 12:30 a.m. Indian time. The winners of the two semi-finals will meet in the FIFA World Cup final on July the 20th at New York, New Jersey Stadium. The losing teams will play the third place playoff on July the 19th in Miami. The India Meteorological Department has issued an orange for heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Bihar, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. It has predicted heavy rainfall conditions at isolated places over Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, East Uttar Pradesh, Gangetic West Bengal and Himachal Pradesh today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India condemns attack on commercial vessel GFS Galaxy off coast of Oman. 10 Indians rescued, one reported missing. New Delhi expresses concern over continuing attacks on commercial shipping in the region. Prime Minister Narendra Modi returns to New Delhi after concluding several agreements during his visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Home Minister Amit Shah inaugurates and lays foundation stones of several development projects in Ahmedabad. Employees Provident Fund Organization introduces a six-month amnesty scheme for establishments operating private Provident Fund Trust to regularize their status. In Wimbledon, Jannik Sinner to lock horns with Alexander Zverev for men's singles title this evening. And in FIFA World Cup, England and Argentina enter semi-finals. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमरीकी हमले जारी रहे तो वो भी

0: जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बन के इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि यह योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
3: ईपीएफओ की एमिनिस्ट योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देशभर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: गृहमंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।
3: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। एस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है आनंद पाठक।
4: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे

0: वो अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की ग्वो हन्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलादिनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ड्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव थी। मीडियम वेव थी।

0: जोहार अर्जुन की दीदी, जोहार।
1: जोहार मंगतू भाई, जोहार। और इसी संगे संगे कला और कलाकार कार्यक्रम सुनते सपाए कलाकार भाई मन की और कलाकार बहन मन की। मैं जुनकी
0: और मैं मंगतू,
1: आमी दोनों करूं से
0: जोहार। तो जुनकी दीदी, हम चो लग तो रोजी दिन चन गोट मंदिर वाती दे रू हमने।
1: हाँ।
0: तो हम चो लग तो आज ये आशे गोटो गीत
1: सत्य बल्ली।
0: हाँ।
1: और ती जानी से मंगतू।
0: हाँ।
1: कि हम चो गांव करिया भाई बहन में जो गीत गाव सत नहीं।
0: हाँ।
1: उन गीत के सुन लो ने मैं बोले से इतरो बढ़िया लागे से जैसा नामी चाय ने शकर ना लग गुर लगाउन दे से भी।
0: हाँ।
1: उसने उन गीत मन लागे से हम के।
0: हाँ, गीत सुन लो ने तो दे पाए के रस रस लागे से अच्छा
1: लागे से। और उन तो कारण बले आए।
0: हाँ।
1: कसन बोल लो ने कोनी बोले लोक गीत जो होय से नहीं।
0: हाँ।
1: उन माटी ले जुड़न रहे से।
0: हाँ।
1: हुता चो जो संस्कृति आसे, हुता चो जो रहन सहन आते आसे, हुता चो तीज तिहार आसे, हुता चो जोन बोले रीति नीति आसे, उन सपाय हुता गीत ने आम के सुनुक मिले से समझुक मिले से।
0: हाँ।
1: एक कारण ही आमी देखू से कि ये जो लोकगीत हो से नहीं,
0: हुन
1: आम के भीतर आम चो भीतर लगले हुन भेदुन जाए से।
0: हाँ।
1: और आम के अच्छा लागे से,
0: भेदुन जाए से और गीत सुन लो ने और अच्छा लागे से। और बीमार आदमी बोले गीत सुन बोले अच्छा बोले वही से
1: चंग चंग हो जाए से। सत्य बल्ली से। और काय हो से जानिस कि ये जो लोकगीत हो से नहीं मंगतू भाई, लोकगीत ने आम चो जो आगे जुगे चो जो लोग मन रहला हुन मन कथा कहनी मन के बल सांगते रहला गीत चो माध्यम ले। और होता असन कहे पुराण चो बोले गोट मन नाम के सुनुक मिलते रहे। तो ये सपाय जो ना है आम चो लोकगीत चो भीतर से मिले दे। जैसे आजकल सिनेमा मन ने हम देखू से गीत गोविंद मन बल बना सत मानतर होता हूँ आम के उतरो हुन मिठनी लागे से।
0: मिठनी लागे से। आजकल तो खेती बाड़ी चो है, खेती बाड़ी ने रोपा लगा तो बेरा बोले रोपा तने बोले गीत मन तो गौछी आते उन बोले।
1: दक से अब मैं बेहते रहे कार्यक्रम काजे तो सड़क रटे गोटक बेड़ा ने रोपते रहला बायले मन। और का है सुंदर लेहरी मारून मारून गीत के गाते रहला। तो बोलते गोटे है मंगतू भाई कि आम चो जोन बोले स्थानीय लोकगीत जोन हो से हुता आम के जो नए बोलो ने मीठ लागे से, हुता रस मिले से आम के और उनके सुन लो ने मन बोले हरिक हो से। तो ये तो होली लोग गीत चोट असले हम चला के और बोले गोट बना से तो एक बोले सुनो।
2: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोजे शनिवार बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लो सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782222666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: हेलो
6: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
5: फिर से
6: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
7: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।

0: सर इतने कहाँ से?
1: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख
2: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
0: काट दिया।
2: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
2: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
4: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: तो मंगतो भाई,
8: हाँ।
7: आमी जसन रोजे दिना कला और कलाकार कार्यक्रम भीतरे कोनी ना कोनी कलाकार भाई बहन मंचो गोटे धरुने उसे और मंचो बारे ने सांगू से असने आज आमी धरुनी लुसे यमुना भाई बाइकर। तो ये मन आपलो जीवना ने काय करला से और कसन ने मन आपलो नाव के आगे बढ़ा ले क्या आमी सुनू दे आले तो सांगू दा।
8: यमुना भाई बाइकर जो जन्म होली 31 दिसंबर 1915 ने और ये मन सतारा जिला ने होलीकर फैमिली ने होली उन मन जो तो उन मन का है कि असने घुमंतु परिवार ने होली।
7: हाँ।
8: तो उन जो पिता जो पीतो आदत रहे।
7: हाँ
8: हाँ
7: हाँ।
8: तो आदत निशा करते रहे।
7: हाँ हाँ।
8: तो पीऊ तो आदत के चक्कर ने उन मन के घर ने छाणून बाती गेलो।
7: अच्छा।
8: तो ये मन जो 14 साल ले उम्र ले गीत गौखलाए सीखला।
7: हाँ हाँ।
8: तो इनछो माए संगे घर चला थका जे। तो उन गली गली ने सड़क ने उन मन गीत गाउन बाती आप लोग जीवन यापन करला।
7: हाँ।
8: और तो ये यमुना भाई बाइकर चो जीवन बल कठिन पूर्ण रही। तो मुंचो देहांत ओली 6 मई 2018 ने महाराष्ट्र सरकार ने बाटले मंचो राष्ट्रीय सम्मान और राजकीय शोक ले विदाई दिला उन्होंने और उन मंचे लावणी साम्राज्य चो उपाधि दिला उनके।
7: अच्छा बोलना उन मंचो सम्मान कर ला।
8: सम्मान कर ला।
7: हाँ, हाँ।
8: और नाटक अकादमी बाटले पुरस्कार बल दिला 1994 ने और 2002 ने पद्मश्री बल मिली भारत सरकार बाटले और 2012 ने बोले सर्वोच्च नागरिक सम्मान बोले मिली
7: बोलो ने इतना उनके सम्मान मिली ने।
8: हाँ। कलाकार चो प्रसिद्ध प्रशिक्षण और उनचो आप लोग गए आप लोग माय बाटले सीखली पूरा।
7: हाँ।
8: और मुंबई ने बोले सीखली हूँ उस्ताद फकीर मोहम्मद कोल्हापुर अकादमी बाटले
7: उतावल जाऊन सीखला। हाँ।
8: हाँ, हाँ, हाँ। संगे संगे हिंदुस्तान संगीत लावण्य और बारीक चो अकादमी बाटले बोले भंगनी शिक्षा धरला।
7: अच्छा।
8: और उनमें जो उम्र ले 15 साल ले सिखुक मुरियाला। तो ये कलाकार मन चो खूबे संघर्ष ने सीखला और आप लोग कला के प्रदर्शित करला।
7: हाँ, हाँ। तो ये रहा यमुना भाई बाइकर।
8: हाँ।
7: तो मैं बोलते रहे मंगतु भाई।
8: हाँ।
7: चोट के तमी अमरण दिलू।
8: हाँ।
7: मान संगे संगे हम चलो गीत बोले आसे।
8: हाँ।
7: तो दादी दी मन कला और कलाकार भीतर जो ना है गीत सुनते का टाकून रसत।
8: हाँ।
7: तो ये गीत के अमरण दे बोलते रहे। हाँ। आ लेते भी सुनू ये गीत के।

0: रसिया गीत रहे मंगतु भाई
1: ने
0: और गीत कुरिन की 44 कसन
1: ये गीत के गौरव ममता चंद्रकर और उन जो संगवारी मन
0: पक्की 44 तो असने हम चले गए और गीत आसे तो एक बोली सुनो
1: हाँ।

0: नाही म्हणून मन भले इस्कूल जास होत. मान तर काय आहे की आजी काल आम्ही दाखवसे की आमच्या इस्कूल ने काय नीती नियमन बदलली से. आगे जुगे जिदलदाय आम्ही पडते रलो उदलदाय जो नाय दसवीं बारहवीं बोर्ड परीक्षा होते रहे ने और दसवीं नेउन भाती लोग आपलो विषय चुनते रला. मंतर एबे जो नाय खिंडी और छे बरक रे जो नाय स्कूल बल जाते रहा पहली कक्षा ने. मंतर एबे जो नाय गोटोक नई शिक्षा नीति इली से हम नई शिक्षा नीति ने जो नहीं का है कि पांच धन तीन धन तीन धन चार बोलून हो से आगे होते रहे दस धन दो आम चुबेरा तो हुनी हिसाब ने कहा है कि हुता जो ना है एवे पिला मन के तीन बरक ने भर्ती कर दे बोलो ने तीन बरक ने हुन मन जादे होता नर्सरी क्लास ने है नी होता तीन बरक पढ़ दे खेल खेलने सीख दे कहनी मन के सीख दे गीत गोविंद के सीख दे है कि नहीं. और फिर तीन बरक जसन हुन मन चो होली बोलो ने हुंचो पढ़ तीन बरक ने भर्ती होला तीन साल पढ़ला छह बरक होली छह बरक खोलो ने हुन मन पहली और दूसरी पढ़ दे पहली दूसरी पढ़ला बोलो ने हुन मन चो पांच बरक चो हुन मन चो पढ़ाई होली एक बोल तो बोल सत प्राइमरी स्टेज एचो पासे फिर तीन बरक काजे हुन मन पहली दूसरी तो पढ़ला एदा तीन बरक ने तीन साल पढ़ दे तीसरी चौथी पांचवी है फिर पांचवी पास होला बोलन तीन बरक पढ़ दे छठवीं सातवीं आठवीं और फिर तीन बरक पढ़ लो पासे चार बरक का जो उनमें नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं पढ़ दे असन गोटोक नई शिक्षा नीति इली से उनके बल सोत एनईपी 2020 और ये हिसाब ने जो ना पढ़ाई जो ना नया हिसाब ने हम सब पिला जिला मन कर दे. तो मैं बोलते रहे हम सब जातो समय हो से तो मोटा गडरक सकल और विदा धरू. कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तो सपाए कलाकार भाई मन के बहन मन के मैं झुमकी
1: और मैं मंगतू
0: हमें दोनों करूँ से
1: जोहार.

मीडियम वेव 300। आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला और कलाकार, मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 3:55 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम उपस्थित होंगे। विविध भारती पर कार्यक्रम जारी रहेंगे। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा प्रारंभ होती है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

जगदलपुर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा प्रारंभ होती है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा होती है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

रात्रि 8:30 पर, रात्रि 9:15 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम दौना में आज रात 10 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे मधुराम और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब जानें कल के कार्यक्रमों के बारे में। प्रातः 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। चिंतन प्रसारित किया जाएगा प्रातः 6:20 पर। आलेख और स्वर होगा स्वामी चंद्रशेखरानंद का। श्री रामचरित मानस का गायन प्रसारित होगा प्रातः 6:25 पर। कृषि सामयिकी कार्यक्रम बेड़ा खाड़ा चौगोट का प्रसारण समय होगा प्रातः 6:35 पर और दोपहर 1:05 पर। हुलहुली कार्यक्रम में कल प्रातः 6:40 पर आप सुनिएगा रणबीर देवपाड़, वादक कलाकार होंगे पाकड़ू और साथी। दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर का प्रसारण होगा प्रातः 7:05 पर। आकर्षण होंगे चर्चा एवं स्वतंत्र वार्ता और होगी सुमधुर फिल्मी गीतों से सजी मधु रीमा। प्रातः 8:30 पर कार्यक्रम लोक मंजरी। लोक साहित्य पत्रिका आधारित कार्यक्रम मोचो माटी प्रातः 9:00। 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। प्रातः 10:00 गुलशन कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आएंगे पुराने नगमे। गुरुदुम कार्यक्रम में कल प्रातः 10:30 पर संजू

क्रम NCERT दोपहर 2:30 पर। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार कल संध्या 5:05 पर। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी संध्या 5:10 पर। कल संध्या 6:30 पर सुदनी और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत। दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर संध्या 7:00। संध्या 7:20 पर कार्यक्रम होगा आमचो गांव। नानोली कार्यक्रम में कल रात 8:00 सुनिएगा सिया और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत। कार्यक्रम पीलामन का जे गोट रात्रि 8:30 पर। वार्ता कार्यक्रम जीवनाचो सोर कल रात 9:15 पर। कार्यक्रम भेंट घाट का प्रसारण किया जाएगा कल रात 9:30 पर। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। संध्या के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है समूह स्वर में देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। संध्या के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम।

0: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार और आदाब दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहद खूबसूरत और दिलकश शाम में आपके और हमारे पसंदीदा कार्यक्रम युवानी में, जिसमें मैं हूं आपकी कंपेयर साथी यास्मीन बानो
1: और मैं हूं खालिदा अहमद। दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आपके दरमियान नए दिन की रोशनी, नई उम्मीदों की ताजगी और वही पुराना दोस्ताना अंदाज लेकर, जहां लफ्जों में होगी ताजगी और बात बन जाएगी यादगार। इसी के साथ स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा अभिवादन। नमस्कार
0: खालिदा। सबसे पहले तो यह बताओ कि तुम कैसी हो और क्या चल रहा है, और जुलाई का यह मानसून मौसम तुम्हें कैसा लग रहा है?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ यास्मीन, सब बढ़िया चल रहा है। और जुलाई के इस मानसूनी माहौल में चारों तरफ एक अलग ही ताजगी महसूस हो रही है। इस मौसम की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिना किसी भेदभाव की हर किसी को एक समान सुकून देता है।
0: वाह खालिदा, तुमने बहुत ही सटीक बात कही है कि यह मौसम बिना किसी भेदभाव के सबको एक समान देखता है, और यही समानता आज की हमारी चर्चा का मुख्य विषय भी है। जब प्रकृति किसी में कोई फर्क नहीं करती, तो हमारे समाज में भी यह बराबरी होनी चाहिए। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी पर।
1: बिल्कुल दोस्तों, जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं तो यह सिर्फ महिलाओं के अधिकार का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक बुनियादी मानव अधिकार है।
0: किसी भी प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए महिलाओं और पुरुषों का हर क्षेत्र में समान अवसर मिलना बेहद आवश्यक है।
1: बिल्कुल सही बात है यास्मीन। आज के इस आधुनिक और डिजिटल युग में हम देख रहे हैं कि महिलाओं हर क्षेत्र में, चाहे वह शिक्षा हो, विज्ञान हो, खेल हो या देश की सुरक्षा, सभी क्षेत्रों में महिलाएं अपना परचम लहरा रही है।
0: लेकिन दोस्तों, इस सब के बावजूद आज भी समाज के कुछ हिस्सों में पुरानी रूढ़िवादी मानसिकता के कारण उन्हें उनके पूरे अधिकार नहीं मिल पाते हैं।
1: हाँ यास्मीन, और इसी मानसिकता को बदलना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता और चुनौती है।
0: लैंगिक समानता की शुरुआत किसी कानून के बाद में सबसे पहले हमारे अपने घरों से होती है। जब हम अपने घर में बेटे और बेटी के बीच का भेद खत्म करेंगे, दोनों को समान शिक्षा और समान सम्मान देंगे, तभी असल मायने में समाज बदलेगा। क्यों, है ना खालिदा?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने यास्मीन, बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद के घर से होती है। जब हम अपने घर में बच्चों को बचपन से ही महिलाओं का सम्मान करना और घर के हर काम में हाथ बटाना नहीं सिखाएंगे, तब तक समाज में असली समानता नहीं आ सकती।
0: बिल्कुल खालिदा, और सिर्फ यही नहीं, आज जरूरत इस बात की है कि हमारे समाज में बेटियों को मानसिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए, और उन्हें यह सिखाया जाए कि वे किसी से कम नहीं है। चाहे आर्थिक रूप से मजबूत होना हो या अपने फैसले खुद लेना हो, हर किसी का समाज में आत्मनिर्भर होना बहुत ही जरूरी है।
1: सही बात है दोस्तों, आज सरकार भी इसके लिए कई बेहतरीन योजनाएं चला रही है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और महिलाओं के लिए फ्री हायर एजुकेशन भी है।
0: हाँ बिल्कुल खालिदा, लेकिन दोस्तों, इन योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब समाज अपने सोच का दायरा बढ़ाएगा। बेटियों को सिर्फ घर की लक्ष्मी कहकर चार दीवारी में बंद रखने के बजाय उन्हें अपनी काबिलियत साबित करने का सम्मान और खुले अवसर देने होंगे।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने यास्मीन, जब एक महिला पढ़ती है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं पढ़ता, बल्कि पूरा परिवार और आने वाली पीढ़ियां शिक्षित होती है।
0: बिल्कुल श्रोताओं, समाज के हर व्यक्ति को भी यह समझना होगा कि महिला की तरक्की समाज के विकास में बाधा नहीं, बल्कि हमारे देश को आगे ले जाने की असली ताकत है।
1: बिल्कुल यास्मीन, लैंगिक समानता का मतलब यह नहीं है कि कोई किसी से ऊपर या नीचे है, बल्कि इसका सीधा शिक्षा मतलब सबको समान अधिकार मिलना है, तभी हमारा देश एक विकसित और सक्षम राष्ट्र बन पाएगा।
0: दोस्तों, जब तक हमारे समाज में बेटियों को बेटों के बराबर समान और आज़ादी नहीं मिलेगी, जब तक

0: नारी को भीतर और बाहर दोनों जगह सुरक्षित और आत्मनिर्भर होने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक हमारा आत्मचिंतन अधूरा है।
1: बिल्कुल सही कहा यास्मीन तुमने। चलिए दोस्तों, हम सभी मिलकर यह संकल्प ले कि हम अपने विचारों से, मतलब जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता के इस भेद को पूरी तरह मिटाएंगे, ताकि हमारा समाज और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके।
0: दोस्तों, आज के चर्चा में बस इतना ही। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले सुनिए ये संदेश।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
5: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं, और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
6: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
7: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम
0: सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम।

0: अंत में सुनेंगे एक बेहद खास कविता पाठ।
1: तो चलिए दोस्तों, आज का पहला गीत सुनवाते हैं हमारे श्रोता दोस्तों को इस कदर सोनू फैज अनवर की मधुर आवाज में। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: तो श्रोताओं, गीतों के इस हसीन सिलसिले को हम यहीं पर थोड़ा थामते हैं और रुक करते हैं ऐसे रास्ते का जो हमें सीधे ले जाते हैं दिलचस्प जानकारियों की ओर।
1: बिल्कुल यास्मीन, तो चलिए दोस्तों, सामान्य ज्ञान के उस जादुई रास्ते पर जहां साधारण बातों में छिपे हैं कुछ बेहद असाधारण और हैरान कर देने वाली जानकारियां।
0: दुनिया की एक लौती नदी जो उल्टी बहती है। श्रोताओं, भारत की लगभग सभी नदियां पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन हमारी नर्मदा नदी भारत की एक लौती ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर और अरब सागर में जाकर मिलती है।
1: दोस्तों, विज्ञान की माने तो अंतरिक्ष में ग्रेविटी न होने के कारण कोई इंसान रो नहीं सकता, वहाँ आपके आंसू नीचे गिर नहीं सकते, बल्कि आंख के पास पानी के गोले की तरह तैरते रहते हैं।
0: दोस्तों, दुनिया का सबसे धीमा जानवर स्लॉथ इतना सुस्त है कि उसे अपना एक वक्त का खाना पचाने में पूरे 2 से 4 हफ्ते, लगभग 1 महीना का समय लग जाता है।
1: दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फ्रांस का मशहूर एफिल टावर गर्मियों में बड़ा हो जाता है? दरअसल कड़क गर्मी के कारण इसका लोहा फैलता है, जिससे इसकी ऊंचाई लगभग 6 इंच यानी 15 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है।
0: उड़ीसा का मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर इस तरह बनाया गया है कि पूरा मंदिर एक

0: दोस्तों, गीतों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले चलते हैं कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका की ओर, जानते हैं विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी कुछ जानकारियों के बारे में। तो श्रोताओं, सबसे पहली खबर है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने इस वर्ष की शुरुआत श्रीहरिकोटा सैटेलाइट EOS-1 लॉन्च करके की है। इसके साथ ही इसरो ने अंतरिक्ष में दो सैटेलाइट को आपस में जोड़ने वाले भारतीय डॉकिंग सिस्टम का सफल प्रशिक्षण किया है।
1: यह तकनीक हमारी आगामी चंद्रयान-4 मानव मिशन गगनयान और भारत की अपनी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार है।
0: और वहीं दोस्तों, पृथ्वी के छिपे रहस्यों को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने आधुनिक जहाज मैंग शियांग के जरिए समुद्र की गहराई में अब तक का सबसे बड़ा खोजी अभियान शुरू किया है।
1: यह जहाज समुद्र की सतह के अंदर पृथ्वी

0: की अंदरूनी परत यानी मेंटल तक 11 किलोमीटर नीचे जाकर सैंपल्स इकट्ठा करेगा।
1: और वहीं दोस्तों, शोधकर्ताओं ने इंसानी बाल से भी पतले ऐसे छोटे बायो रोबोट्स बनाए हैं जिन्हें शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जा सकता है।
0: ये बायो रोबोट शरीर की नसों में तैरकर सीधे प्रभावित हिस्से जैसे ट्यूमर या क्लॉथ तक जाकर बिना किसी सर्जरी के सटीक दवा पहुंचाएंगे।
1: दोस्तों, गिरती हुई बारिश की बूंदों के घर्षण और गतिज ऊर्जा से सीधे बिजली बनाने वाला एक खास नैनो जेनरेटर तैयार किया गया है।
0: IIT दिल्ली और इंदौर के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में इसका उन विकिंग मॉडल पेश किया गया है।
1: अब वहीं दोस्तों, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत भारत सरकार ने देश भर में स्कूल में AI और रोबोटिक्स टूल किट पाठ्यक्रम शुरू किया है।
0: इसी नए शैक्षणिक सत्र से लागू इस सिस्टम में बच्चों को रटने के बजाय कैंडिंग, 3D प्रिंटिंग और स्पेस साइंस के मॉडल सिर्जाए जा रहे हैं।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विज्ञान पत्रिका, जिसमें आपको विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी जानकारियां मिली होंगी।
0: तो दोस्तों, आज का हमारा अगला गीत सुनवाते हैं हमारे श्रोता दोस्तों को। आज का अगला गीत है काली काली जुल्फों के, जिसे अपने मधुर स्वर से सजाया है उस्ताद राहत फतेह अली खान जी ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, कार्यक्रम तरन्नुम को देते हैं कुछ पल विराम और सुनते हैं कविता पाठ हर्ष ठाकुर के साथ।
1: आकाशवाणी सुन रहे समस्त श्रोताओं को मेरा स्नेहिल नमस्कार। कविता के सुरों से हृदय रंगने आया हूँ इस बार, दिल से करता हूँ अभिनंदन अपार। इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के समक्ष खड़ा, या यूं कहूँ आपके स्नेह से घिरा, आनंद के पेड़ का मैं एक छाया हूँ, शब्दों का उत्सव सजाने आया हूँ। चांद देखे सीखे कविता जैसे चकोर है, वैसे ही मेरे प्रेरणा तुलसीदास और मेरा नाम हर्ष ठाकुर है। अहंकार का दीप ना जलाओ, यह अंततः धधक कर

घर में मेरे शत्रु का नाम क्रोध से वह तिल मिला उठा। पिता ने समझाया फिर क्रोध दिखाया, बालक ने नारायण ही गाया। विष पिलाया हाथी दौड़ाए, सर्वों के बीच भी उसे बैठाए। पर हर संकट में प्रभु ने थामा, भक्ति ने कभी हार ना माना। तब आई होलिका अग्नि वस्त्र ओढ़े, सोची आज तो जीतेंगे मेरे मोहरे। प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी, अग्नि जली लपटें ठी ऐठी। पर हुआ वही जो सत्य का नियम, भक्ति बचा जला अधर्म का ही भ्रम। सत्य का नियम अटल रहा, जग ने ली फिर सांस, भक्त सुरक्षित बाहर आया। होलिका भस्म हुई उस रात, जग ने देखा भक्ति की बात। आखिर क्रोधित हो बोला राजा अभिमानी, कहाँ है तेरा भगवान बता दे प्राणी। क्या इस खंबे में है वो विद्यमान? प्रहलाद बोला हाँ है वो सर्वत्र महान। तभी फूटा खंबा गर्जन के साथ, नरसिंह रूप में प्रकट हुए प्रभु उस रात। ना दिन था वह ना पूरी रात, ना भीतर ना बाहर की बात। गोद में बिठाकर दुष्ट

0: अभी आप सुन रहे थे कविता पाठ हर्ष ठाकुर के साथ। यास्मीन, कोई शायरी वायरी सुनाओ भाई हमारे श्रोता दोस्तों को।
1: हाँ बिल्कुल खालिदा। धड़कन को जो सुकून दे वो नाम हो तुम, धड़कन को जो सुकून दे वो नाम हो तुम, मेरे दिल की सुबह और हसीन शाम हो तुम। सदियों से जिसे ढूंढ रही थी ये नजर मेरी, सदियों से जिसे ढूंढ रही थी ये नजर।

0: अगर मेरी दिल की हर एक धड़कन की आवाज हो तुम।
1: वाह वाह यास्मीन, क्या बात है, बहुत खूब।
0: तो चलो दोस्तों, आज का अगला गीत भी कुछ इसी तरह है, ऐ सनम, जिसे मधुर से सजाया है कमाल खान ने। सुनिए दोस्तों ये प्यारा सा गीत।

चलिए दोस्तों, आज का अगला गीत सुनवाते हैं हमारे श्रोता दोस्तों को तेरे नाम का शहर, जिसको अपनी मधुर आवाज में सजाया है सौरव रॉय और उस्ताद राशिद खान ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

साथियों, अगला गीत है बरसात के दिन आए, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। सुनिए दोस्तों ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, वक्त आ गया है आज के इस महफिल को विदा कहने का और यादों के इस खूबसूरत सिलसिले को यहीं पर थामने का। घड़ी की सुइयां गवाह है कि आपके साथ बिताया हर पल बेहद लाजवाब रहा।
1: जी हाँ दोस्तों, दिल तो नहीं चाहता आप सभी से विदा लेने का, पर उम्मीदों के धागे कल फिर हम इसी मोड़ पर जोड़ेंगे नए गीतों और पुरानी यादों के साथ। फिर होगी आप सभी से मुलाकात।
0: तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, मुझे आपकी कंपेयर साथी खालिदा अहमद को
1: और मुझे आपकी रेडियो साथी यास्मीन बानो को। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए कहा है कि यह अमान्य है और इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। उसने दोहराया है कि वो इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रखा है। मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमले के बाद किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमान ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से

मुकाबला कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफिनी से जारी है। पुरुष सिंगल्स का फाइनल आज इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं बस्तर जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले पांच मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, प्रदेश में अगले वर्ष से नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह ने लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र भेजकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत देश के अन्य प्रमुख शिक्षा बोर्डों और मंडलों के समान ही अब छत्तीसगढ़ में भी नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा 31 मार्च तक चलेगा। हालांकि छात्रों को मिलने वाले ग्रीष्मकालीन अवकाश में कोई कटौती नहीं की गई है। प्रदेश में 1 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश पहले की तरह ही यथावत रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के सभी स्कूलों में कक्षा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष निर्धारित कर दी है। ये नई व्यवस्था सभी शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालयों पर लागू होगी। श्रोताओं, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बीते 9 जुलाई को जगदलपुर के डिमरापाल में स्थापित कॉन्टिनेंटल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बस्तर संभाग की पहली और छत्तीसगढ़ की दूसरी अत्याधुनिक कैथ लैब का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस सुविधा के शुरू होने से बस्तर सहित प्रदेश के हृदय रोगियों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और अन्य आधुनिक उपचार अब स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगे। अब मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना होगा, साथ ही उन्हें समय पर उपचार भी मिल सकेगा। श्रोताओं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी रायपुर द्वारा बीते 27 जून को जगदलपुर में वार्तालाप मीडिया संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और उपलब्धियों का लेखा जोखा साझा किया। उन्होंने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की कल्याणकारी नीतियों से बस्तर नक्सलवाद के अंधेरे से निकलकर विकास और विश्वास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। श्रोताओं, महतारी वंदन योजना के तहत पात्र हितग्राही महिलाओं के ईकेवाईसी के पंजीयन की तिथि 30 जून से बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी गई है। बस्तर जिले के महिला और बाल विकास अधिकारी मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले में लगभग 90% हितग्राही महिलाओं ने ईकेवाईसी करा लिया है। उन्होंने छूटी हुई हितग्राही महिलाओं से निर्धारित समय में ईकेवाईसी कराने की अपील की है। श्रोताओं, जिले के दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में 141 बैंक सखियां गांव-गांव बैंकिंग सेवाएं पहुंचा रही हैं। माइक्रो एटीएम और आधार आधारित भुगतान प्रणाली के जरिए ग्रामीणों को नगद निकासी, जमा, बैलेंस जांच और धन अंतरण जैसी सुविधाएं गांव में ही मिल रही हैं। इसके साथ ही वे ग्रामीणों को डिजिटल भुगतान, सुरक्षित बैंकिंग और वित्तीय साक्षरता के प्रति भी जागरूक कर रही हैं, जिससे गांव में डिजिटल वित्तीय लेनदेन को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। जून महीने में बैंक सखियों ने पेंशन, महतारी वंदन, मनरेगा और अन्य योजनाओं के साथ ही वीबीजी रामजी योजना के तहत हितग्राहियों को करोड़ों रुपए का भुगतान किया। इससे ग्रामीणों, खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगजनों को बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। श्रोताओं, बारिश के मौसम में बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। कंपनी ने कहा है कि बिजली के खंभों, टूटे तारों, ट्रांसफार्मरों और अन्य विद्युत उपकरणों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा इनमें किसी तरह की छेड़छाड़ न करें। यदि कहीं बिजली के तार या उपकरण क्षतिग्रस्त दिखाई दें तो इसकी सूचना तुरंत टोल फ्री नंबर 1912 मोर बिजली ऐप या निकटतम वितरण केंद्र को दें। श्रोताओं, जिले के बकावंड विकास खंड के अंतर्गत जैतगिरी, सरगीपाल, गिरोला, डुरका बेड़ा और बदलावंड गांव में पिछले दिनों जल अर्पण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने जल संरक्षण और पानी बचाओ अभियान को सफल बनाने के लिए सहभागिता का संकल्प लिया। कार्यक्रम में जल जीवन मिशन की IEC ज्योत्सना

0: ग्रामीणों को जल के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने जल स्रोतों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने, जल संसाधनों की सुरक्षा करने, सोखता गड्ढों और किचन गार्डन की उपयोगिता तथा स्थानीय स्तर पर पौधरोपण करने की बात कही। श्रोताओं, जिले में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग ने अब तक 7,25,00,000 से अधिक मत्स्य बीज का उत्पादन किया है। मत्स्य पालन विभाग के उपसंचालक मोहन राणा ने बताया कि जिले में इस वर्ष 9,50,00,000 मत्स्य बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: जिले की चिट्ठी में अभी आप सुन रही थी बस्तर जिले की चिट्ठी। आलेख था संतोष वर्मा का। यह आकाशवाणी रायपुर है। अब सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर ही छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग सोहेल खान यस्तानी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। देशभर में आज चलाएगी इस पौधारोपण अभियान दिल्ली में आयोजित पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होइन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कालीले शुरू हुई छत्तीसगढ़ विधानसभा के 5 दिन के मानसून सत्र और दंतेवाड़ा और कांकेर जिला में कार्रवाई करत सुरक्षा बल बरामद करीस हथियार और माओवादी जिनिस। अब समाचार विस्तार ले। देशभर में आज पौधारोपण के बड़का अभियान चलाएगी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। हकीन की सरलक भविष्य सुनिश्चित करे खातिर और पर्यावरण संरक्षण खातिर पौधा लगाए जाना जरूरी हवे। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान हकीन की आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी के तापमान बढ़ेले चिंता में हवे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 5 दिन के मानसून सत्र काली बिहनिया 11 बजे ले शुरू होही। ये सत्र 17 जुलाई तक चलही। ये सत्र के दौरान कुल 5 दिन बैठक आयोजित करी जाही। सत्र के दौरान प्रश्नकाल और वित्तीय काम के संगे संग 8 ले ज्यादा संशोधन विधेयक मन ऊपर चर्चा और विचार करे जाही। यही बीच मानसून सत्र के तैयारी ला लेके नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत के अध्यक्षता में आज रायपुर में कांग्रेस विधायक दल के बैठक चलत हवे। प्रदेश में मोर गांव मोर पानी अभियान के जरिया जल संरक्षण ला जन आंदोलन बनाए जावत है। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत जम्मू जिला मन में रोजगार जल संरक्षण और हरित विकास के काम तेजी ले करे जावत है। यही कड़ी में मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के ग्राम पंचायत बरदर में जन सम्मेलन एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण और जन भागीदारी कार्यक्रम के आयोजन करेगी। कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पौधारोपण करीन और कंटूर ट्रेंच के खुदाई कर जल संरक्षण के संदेश दीन। जानबा के मुताबिक ग्राम पंचायत बरदर में 52 एकड़ क्षेत्र में समेकित जल संरक्षण और हरित विकास मॉडल विकसित करे जावत है। यहां जल संरक्षण के संगे संग तकरीबन 2000 पौधा लगाए जावत है। मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत करे गए काम ले ये क्षेत्र में तकरीबन 200 लाख मीटर भूजल रिचार्ज क्षमता विकसित हो हवे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ माफी योजना 2026 शुरू करीन हवे। एकर तहत छूट मिले भविष्य निधि ट्रस्ट चलैया प्रतिष्ठान मनला अपन स्थिति नियमित करे के एक मुफ्त मौका दे गए हवे। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय बताइन कि ये योजना 6 महीना तक चलही। एकर लाभ ऐसन प्रतिष्ठान ला मिली जौन आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट के संचालन करत हवे। ऐसन ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि के प्रबंधन सीधा ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपन निजी ट्रस्ट के जरिए ले करते। राजधानी रायपुर के माना कैंप के शूटिंग रेंज में काली 25वीं छत्तीसगढ़ राज्य शूटिंग मीट के शुभारंभ करेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश राइफल एसोसिएशन डहरले आयोजित यह राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश भर के निशानेबाज मन हिस्सा लेवत हवे। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला शामिल होइन। विशेष अतिथि के रूप में विंग कमांडर विवेक कुमार साहू शामिल होइन। ये राज्य शूटिंग मीट में मनखे और माइलोगिन वर्ग के संगे संग आने आने आयु समूह के मुकाबला आयोजित करे जावत हवे। नगरीय प्रशासन विभाग प्रदेश के नगरीय निकाय नगर निगम नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत ला वित्तीय आवंटन जारी करे है। एकर तहत वित्तीय बच्चर 2026-27 खातिर महापौर अध्यक्ष निधि के संगे संग पार्षद निधि के पहली किस्त के रूप में 50

0: प्रतिशत राशि हस्तांतरित करे के आदेश जारी किए गए हवा। दोनों मदला मिला के कुल 104,54,25,000 रूपया के राशि बैंक के जरिया ले सीधा निकाय मन के खाता में भेजे जावत है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हवा।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में

उहें एक ठिन आने हादसा मा अंबिकापुर सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 43 मा सेदम के तीर मोटरसाइकिल ले जावत रहीस एक ठिन दंपत्ति ला ट्रक हा बाजू पाछू ले टक्कर मार दिस जेखर ले महिला के मौत होगीस और ओकर पति हा गंभीर रूप ले घायल होइस हवे। उहें जांजगीर चांपा जिला के बुचहरदी गांव मा दू ठिन मोटरसाइकिल के बीच हुए टक्कर मा एक मनखे के मौत हो गए हवे। एक दुर्घटना मा दू लड़का समेत चार झीन आने मनखे मन के घायल हो गए जेमन ला बिलासपुर के अस्पताल में भर्ती कराए गए हवे। अब थोड़कुन समाचार सार मा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग डहार ले सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर के भर्ती खातिर प्रारंभिक परीक्षा आज बिहनिया 10 बजे ले मंझनिया 12 बजे तक आयोजित करेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल मा भिलाई और भिलाई नगर के बीच कुर्सी पार रेलवे संपार फाटक मा मरम्मत काम करे जाही। एकर चलत 14 जुलाई के बिहनिया 8 बजे ले 24 जुलाई के रतिहा 8 बजे तक ए फाटक मा सड़क यातायात पूरा बंद रही और जसपुर जिला के चार ठिन वन परिक्षेत्र मन मा ए बेरा लगभग 32 हाथी मन के दल ह किंजरत हवे। हाथी मन के गतिविधि ला देखत वन विभाग हा निगरानी बढ़ा दे गए हवे। वन विभाग हा गांव वाला मनखे मन ले अपील करीन है कि ओमन हाथी के किंजरिया क्षेत्र मा झन जावे। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घाव फेर। देशभर मा आज चलाए गए पौधारोपण अभियान दिल्ली मा आयोजित पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम मा शामिल हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। काली ले शुरू हुई छत्तीसगढ़ विधानसभा के 5 दिन के मानसून सत्र और दंतेवाड़ा और कांकेर जिला मा कार्रवाई करत हुए सुरक्षा बल हा बरामद करीन हथियार और माओवादी जिनिस। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन।

वायान शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल नेटेन पेकोड़ा आयु हिसाब ते आधार ते प्रवेश आता अभिभावक लोर किन पेकोड़ किन सुविधा तले राज्य शासन 1 अप्रैल तीना निर्धारित आयु पूरा की व पेकोड़ किन लय 1 जुलाई एवना अदेना आवश्यक आयु पूरा कियान मून लेन छूट प्रदान की तद मिंदे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक किन लागू कियान लय छत्तीसगढ़ पहला राज्य बने माता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नद अध्यक्षता ते अत्तद 8 जुलाई नेटेन मंत्रालय तग राज्य मंत्रिमंडल तय बैठक तग इद विधेयक तोन अनुमोदन की तोड़ इद विधेयक तक उद्देश्य राज्य तग व्यापार और उद्योग स्थापित किया न प्रक्रिया किन न कह सरल पारदर्शी डिजिटल बना किया न मिंदे मंत्री परिषद बस्तर फाइटर्स तग फाइटर आरक्षक भर्ती और सेवा नियम तग संशोधन तोन स्वीकृति इत तोड़ अगान छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना और संचालन संशोधन विधेयक प्रारूप अनुमोदन की तोड़ इदेंते राज्य तक गुणवत्ता पूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान तक स्थापना की प्रोत्साहन दुर्किता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अत 8 जुलाई नेटिन मंत्रालय तक छत्तीसगढ़ SDG 2.0 फ्रेमवर्क तक विमोचन की तोड़ इद मौकते राज्य और जिला संकेत फ्रेमवर्क 2.0 मेटाडेटा हेडबुक और बस्तर तक समग्र विकास तले बस्तर अंजोर पहल तक शुरुआत बेंड अत्ता बस्तर अंजोर पहल त माध्यम ते शिक्षा स्वास्थ्य आजीविका और वेन जरूरी सुविधा तीन क्षेत्र ते बेहतर समन्वय त संगे आयनाद मिंदे बस्तर अंजोर त अंतर्गत जिला स्तर त मूंड प्रमुख पहल निया नलनार 2.0 बस्तर मुन्ने और स्वस्थ बस्तर त अभिसरण की तद मिंदे छत्तीसगढ़ तोर उप मुख्यमंत्री विजय सरमाल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हिसाब ते प्रदेश तक सभ्य पात्र परिवार लोर किन आवास तलाबाम इले केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ते आवश्यक पहल कियान गुहार की तोड़ श्री सरमाल के तोड़ की 24 जून नेटेन छत्तीसगढ़ तक आसमत ग्राम सभा ते आवास प्लस 2.0 तक सूची ग्राम सभा किन प्रस्तुत की तद मिंदे मती सर्वेक्षण तक वेलते पलायन की तरोर अन्य कारण ते चुडू पात्र लोर किन दुर्कवा मत्ता और किन सूचित पेदिल शामिल आईवा मत्ता अदेन तकनीकी कारण तमय दे चुडू पात्र परिवार लोरा जानकारी अपलोड आईवा मत्ता अदेन के छत्तीसगढ़ तक बढ़िया संख्या ते पात्र परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हिसाब ते और दुर्कवा मत्ता श्री सरमाल केंद्रीय मंत्री इद समस्या का समाधान तले जरूरी पहल कियान गुहार की तोड़ राज्य सरकार ताकि प्रदेश तक इलेक्ट्रॉनिक वाहन किन बढ़ावा इले चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किन तेजी ते बड़ा कियान फैसला की तद मिंदे सभ्य जिला तोर RTO और DTO लोर किन तम व क्षेत्र ते चार्जिंग स्टेशन किन लय जागा उड़लय और NOC तत् प्रक्रिया तेज कियान निर्देश इत्ता मिंदे इंजे अलग अलग कंपनी किन अलग अलग एप इत्ता मिंदे अदेन के उपभोक्ता लोर किन परेशानी आसोर मत्ता सरकार इंजे राज्य स्तर तक एकीकृत प्लेटफॉर्म एप बना कीता अगन भारत सरकार ता यूनिवर्सल EV चार्जिंग एप ततमता श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन अध्यक्षता ते अत 9 जुलाई नेटिन मंत्रालय तक छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल तत पहला बैठक अत्ता बैठक तक ई रिक्शा सहायता योजना हिसाब ते दुरकान अनुदान राशि किन 50,000 रूपया ते फिर सिकिस 1,00,000 रूपया किया निर्णय की तोड़ इदेन संगेन गिग वर्कर्स गोड़क मेहतनोड़ और असंगठित कर्मचारी लोरकिन मेधावी पेकोड़किन लय पूना कल्याणकारी उवाट तियार कियान सहमति वेंड बने मत्ता स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अत्तद 9 जुलाई नेटेन जगदलपुर ता डिमरापाल तग मदन कॉन्टिनेंटल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तग बस्तर संभाग तद पहला और छत्तीसगढ़ तद दूसरा अत्याधुनिक कैथ लैब तद लोकार्पण कित्तोर इद मोहकते और कित्तोर की इद सुविधा शुरुआत तांग बस्तर त संगेन प्रदेश त हृदय रोगी लोर किन एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी और अन्य आधुनिक उपचार त सुविधा वेन दोर किता अगन मरीज लोर किन इलाज तले बढ़िया शहर त पुरो निर्भर आयो संगेन और किन उपचार वेन दोर किता श्री जायसवाल कित्तोर की केंद्र सरकार ताकेट आयुर्वेद आधारित उपचार प्रणाली किन बढ़ावा इले देशेम तग मूंड केंद्र स्थापित कित्तद मिंदे इदेनग उन केंद्र बस्तर तग स्थापित कियान लय उन प्रस्ताव सरकार किन लोह तद मिंदे रेडियो प्रसारण दीदी के गोठ कार्यक्रम तद उन वर्ष पूरा अत्तांग 9 जुलाई नेटेन उन बढ़िया कार्यक्रम आसमत्ता बस्तर तग पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार तग आसमत्त कार्यक्रम ते बस्तर संभाग तोर नर्ग जिला तीना वत्ता मुत्ते शामिल आसमत्ता अग लखपति दीदी लोर किन सफलता वेसुड़ी

मंत्री केदार कश्यप केत्तूर की बस्तर ते मात्र शक्ति कठिन परिस्थिति ते सामना किशोर एंड समाज तक बदलाव ततमता और केत्तूर की बिहान योजना मध्यान भोजन योजना और अन्य सरकारी वाट के माध्यम ते बस्तर ते मुद्दे इंजे आर्थिक और सामाजिक रूप ते दुर्सायमता छत्तीसगढ़ तक राष्ट्रीय सेवा योजना NSS

रेण वर्षात अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपा की तदमीन दे विभाग तौर सोबे जिला संगठक लोर किन कलेक्टर किन समन्वय किस जिला स्तरीय सलाहकार समिति गठन किया नाथ नियमित रूप से बैठका किया नाथ और लेंजिंग लेंजिंग अधेना रिपोर्ट राज्य और विश्वविद्यालय NSS प्रकोष्ठ किन लोहतनर निर्देश इतमीन दे महतारी वंदन उवाट हिसाब से पात्र हितग्राही मुद्दे किन EKYC पंजीयन तारीख 30 जून तिना फिर 30 अगस्त की तदमिन दे बस्तर जिला महिला और

राज्य सरकार ताकेट पात्र हितग्राही मुतेकिन बैंक खाता नग लेंजिंग 1000 रुपए तक राशि ई तोरु मुसूर कालम ते मौसम ते बिजली ते आयान दुर्घटना किन बचे मायान लय छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मानेड किन विशेष सावधानी कियान अपील कित तोड़ कंपनी के तकी बिजली त

मिंदे कोंडागा वन मंडल ताकेट अत्त 7 जुलाई नेटेन जगदलपुर नाका चौक तग आयन प्रीते पोदला तूसियान मधुलत्ता बस्तर विकास प्राधिकरण त उपाध्यक्ष लता उसेंडी अद केंद्र त उद्घाटन कित्ता इत मोहकते

स्कूल नगा और सार्वजनिक जागा नगा बैंड लगा कियान लय गुहार कित्ता। नारायणपुर जिला तय कोंडागांव नारायणपुर अर्थग 12.6 किलोमीटर लाटिन सड़क बने मत तंग इत क्षेत्र तद तस्वीर बदले मत्ता। इंजे जिला तक विकास कार्य नेकाय गति ते आयमता मुन्ने नेकाय अंगड़ा मत्ता रोड बड़ी बड़िया बोंदा मत्ता अद मार्गेम तग दायना नेकाय समय लागे मासवर मत्ता। दुर्घटना बेंडा

आयमता जिला स्तरीय वेद सम्मेलन अवसर ते कांकेर माकड़ी जैव विविधता पार्क तक औषधीय वृक्षारोपण कार्यक्रम तक आयोजन आसमत्ता अद कार्यक्रम तक औषधि पादप बोर्ड तोर अध्यक्ष विकास मरकाम मुख्य अतिथि बने मा शामिल आसमत्तोर अद मौकते श्री मरकाम कोंडेकिन औषधीय पोदलाकिन नलतासान लाय और किन अध्ययन

कि नल पुनर्वासीय लय बीजापुर जिला प्रशासन 3,74,00,000 रूपया तद राशि स्वीकृत की सी तरु पुनर्वास नीति हिसाब ते इद पैसा आत्मसमर्पित मानेड़किन पेदेड़ते बेदेवन राष्ट्रीय।

और किंठा की इस मत्तर मारेंगढ़ प्रमुख समाचार वेंडोंड तेप। छत्तीसगढ़ विधानसभा ते मानसून सत्र नाड़ दिना अंत मोदूल 17 जुलाई उन्ना चले मायन आयोजित सत्र ते कुल एक बैठक आता देशम ते अन्य शिक्षा बोर्ड ते लेकिन इंज छत्तीसगढ़ तक वेंड पूना शिक्षा सत्र 1 अप्रैल दिना मोदूल आता। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक किन लागू किया लय छत्तीसगढ़ देशम ते पहला राज्य बने माता राज्य मंडल ते बैठक तक विधेयक तक प्रारूप अनुमोदन की तक मिंदे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बस्तर संभाग ते पहला और छत्तीसगढ़ ते दूसरा अत्याधुनिक खेत लैब का लोकार्पण की तोर इदेन संगेन गोंडी समाचार बुलेटिन तक यू माटा इगे मार्ता जोहार।

0: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
1: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
0: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
1: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
0: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?

0: संकल्प कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कल से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के नगरीय निकायों को जारी किया वित्तीय आवंटन। और दंतेवाड़ा और कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार और विस्फोटक बरामद किए। अब समाचार विस्तार से। देशभर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: राज्य में मानसून के दौरान औद्योगिक इकाइयों द्वारा संचालित वृक्षारोपण कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए आज रायपुर में पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने 31 जुलाई तक वृक्षारोपण के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए। श्री चौधरी ने कहा कि वृक्षारोपण की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाए तथा पोर्टल पर समयबद्ध प्रविष्टि अनिवार्य की जाए। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र कल सुबह 11 बजे से शुरू होगा। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र के दौरान प्रश्नकाल तथा वित्तीय कार्यों के साथ ही 8 से अधिक संशोधन विधेयकों पर चर्चा और विचार किया जाएगा। इस बीच मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत की अध्यक्षता में आज रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एकमुश्त अवसर दिया गया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के नगरीय निकायों, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों को वित्तीय आवंटन जारी किया है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए महापौर अध्यक्ष निधि के साथ ही पार्षद निधि की पहली किश्त के रूप में 50% राशि हस्तांतरित करने का आदेश जारी किया गया है। दोनों मदों को मिलाकर कुल 104,54,25,000 रूपये की राशि बैंकों के माध्यम से सीधे निकायों के खातों में भेजी जा रही है। प्रदेश में मोर गांव मोर पानी अभियान के जरिए जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाया जा रहा है। विकसित भारत जीराम जी योजना के तहत सभी जिलों में रोजगार, जल संरक्षण और हरित विकास के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के ग्राम पंचायत बर्दर में जन सम्मेलन, एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण और जन भागीदारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पौधारोपण किया और कंटूर ट्रेंच की खुदाई कर जल संरक्षण का संदेश दिया। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत बर्दर में 52 एकड़ क्षेत्र में समेकित जल संरक्षण और हरित विकास मॉडल विकसित किया जा रहा है। यहां जल संरक्षण के साथ ही करीब 2000 पौधे लगाए जा रहे हैं। मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत किए गए कार्यों से इस क्षेत्र में लगभग 200 लाख लीटर भूजल रिचार्ज क्षमता विकसित हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
2: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों

नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं। ये कार्रवाई हाल ही में आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटे माओवादियों की निशानदेही पर बारसूर थाना क्षेत्र के तोड़मा जंगल में की गई। सर्च अभियान में लगभग 16 लाख रुपए मूल्य के 116 ग्राम सोने के बिस्किट, 2 लाख रुपए नकद, इंसास राइफल, मैगजीन, कारतूस, बंदूकें, टिफिन बम, पाइप बम, हैंड ग्रेनेड, वर्दी और अन्य सामग्री बरामद की गई। वहीं कांकेर नारायणपुर सीमा क्षेत्र के ग्राम आलपरस और गुमचूर के बीच जंगल पहाड़ी क्षेत्र में भी सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखा गया डंप बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र में डीआरजी, बीएसएफ और बीडीएस की संयुक्त टीम द्वारा सघन सर्चिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान जमीन के भीतर छिपाकर रखे गए हथियार, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और नक्सली सामग्री बरामद हुई है। इनमें 2 .303 राइफल, 32 राउंड कारतूस, 1 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 3 वायरलेस बैटरियां, रेडियो और नक्सली साहित्य शामिल है। मोहला मानपुर जिले में आज कोरकोटी मदनवाड़ा नक्सल हमले की 17वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। जिले के पुलिस रक्षित केंद्र मोहला में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, आईटीबीपी के अधिकारी, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। जिले के विभिन्न थानों और गांवों में भी श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गईं। इस अवसर पर मोहला और औंधी में रक्तदान शिविर भी लगाए गए। गौरतलब है कि 12 जुलाई 2009 को मदनवाड़ा क्षेत्र में हुए नक्सल हमले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे सहित 29 जवान शहीद हो गए थे। जशपुर में तपकरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत उड़ीसा कुनकुरी मार्ग पर लवाकेरा के पास कल एक तेज रफ्तार हाईवा और कार के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उधर सरगुजा जिले के मैनपाट में कल 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने से हुई टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य हादसे में अंबिकापुर सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 43 में सेदम के पास मोटरसाइकिल से जा रहे एक दंपत्ति को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौत हो गई और उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं जांजगीर चांपा जिले के बुचहरदी गांव में 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस दुर्घटना

कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। राजधानी रायपुर के माना कैंप स्थित शूटिंग रेंज में कल 25वीं छत्तीसगढ़ राज्य शूटिंग मीट का शुभारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश राइफल एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश भर के निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ संजीव शुक्ला शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में विंग कमांडर विवेक कुमार साहू शामिल हुए। इस राज्य शूटिंग मीट में पुरुष और महिला वर्ग के साथ अलग अलग आयु समूहों में मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सूबेदार, उप निरीक्षक, संवर्ग और प्लाटून कमांडर की भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा आज सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की गई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में भिलाई नगर के बीच स्थित खुर्सीपार रेलवे संपार फाटक पर मरम्मत कार्य किया जाएगा। इसके चलते 14 जुलाई की सुबह 8 बजे से 24 जुलाई की रात 8 बजे तक इस फाटक पर सड़क यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले की पुलिस ने 8,65,00,000 रूपये से अधिक की ऑनलाइन साइबर ठगी के मामले में भिलाई के एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। और जशपुर जिले के 4 वन परिक्षेत्रों में इन दिनों लगभग 32 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। हाथियों की गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे हाथियों के विचरण वाले क्षेत्रों में न जाएं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभर में आज चलाया गया व्यापक पौधारोपण अभियान। नई दिल्ली में आयोजित वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कल से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के नगरीय निकायों को जारी किया वित्तीय आवंटन। और दंतेवाड़ा और कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार और विस्फोटक बरामद किए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। संध्या के साथ

0: राम राम जुनकी दीदी, राम राम
1: राम राम मंगतो भाई, राम राम। ऐसे संगे संगे बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुनतो सपाए गांव करे दादी दी मन के मैं जुनकी
0: और मैं मंगतो
1: आमी दोनों करूं से राम राम, राम, राम। और नन ननी पिला मन के आमी तो दोनों बाट लेने खुबे खुबे माया मंगतो भाई।
0: हाँ।
1: देख आमी नहीं जिदल दाय कोनी बल बुता करूस नहीं।
0: हाँ।
1: उदल दाय एकलो बुता कर लो नहीं, हम के समय बल ज्यादा लागे से और मसागत बल ज्यादा लागे से। आए कैसे मानता जिदल दाय हमी मिलून मिसुन काई बल काम के करूं से तो हुन काम जो ना है समय बल कम लागे से और मेहनत मसागत बोले कम लागे से।
0: आजकल तो रोपा बोले मंडा दी थी होली से तो उधर तो एकली रोपा मंडा लेने के कितने दूर के जगह है
1: सत्य बोले दिन भर लोन बोल गोटोक लेन ले लेन नहीं जाए।
0: हाँ।
1: और होता है हमें दस बारह जन मिसुन कर लो ना गोटोक डोली एक पार बोल नहीं लागे सारे दे।
0: हाँ।
1: ने?
0: हाँ। तो उन्हीं आए जमाए लोग मिलून को सुनवाती काम के आगे बढ़ाती हुई थी।
1: हाँ हाँ
0: तो आमचो लग तो असने आहे आमचो परंपरा रे बोले हाय कोणी बोले हाय नाहले की बिया करे हाय नाहले मरनी करे हाय तो उता बोले सहयोग नाहले तो नी होय काम करे बोले
1: बोलो ना दा कि बड़े बूता हो कि सामाजिक काम हो। हाँ। कोनी थाने बोले आमी नहीं लोग मिशन भाती करू से नहीं तो हुन काम झटके होय सर अच्छा होय से।
0: हाँ।
1: जसन बिया चौगोट के टिप में बोलिस।
0: हाँ।
1: बिया तो एकलो दूल्ही लेकर दूल्हा लेकर बसन रहलो तो बिया नहीं
0: होय
1: और सोचे माए बाप बोलो चार जन मिसलन बलनी होय।
0: हाँ।
1: होता समाज सो कितरो लोग मने सोत फटाफट कौन हुन दारू का जा सोत कौन हरदी कूट सोत कौन काय कर सोत बोलो सपाच बुताउन बाटून दे सोत ने।
0: हाँ।
1: कौन बजनिया डगरो जा सोत मोरी बाजा लोग के ने।
0: हाँ।
1: कौन नेवता देवता का जा सोत।
0: हाँ।
1: तो असने आमी काम के बाटून भाती मिलून भिसुन कर लो ने हुन काम जो ना नगद समय ने हुन जाए से और नगद हिसाब ने हो से।
0: हाँ। समाज ने समाज के सहयोग करता है तेवे तो हो जे काम।
1: हाँ। तो यही काज हम बोलू से की सामुदायिक सहयोग बोलो ने मिलून मिसुन जुगे लोग मिलून वाम कोनी बल काम के करूं से हुन हम चो जो ना हम दादा आजी बेरा ले हम समाज ने हम पर्या ने हम देखते हूँ से कि सपाय कितरो बढ़िया मिलून मिसुन काम के करते इला से उनके देखो ना हम सीख लू से और हम के देखो आती हम चो ए तो पीढ़ी मन सीख दे तो यही आए परंपरा है कि नहीं। तो हुनी हिसाब ने जो ना हम कोनी बल बुता के करूं दे तो हुन समय हिसाब ने हम के अच्छा ले हो दे।
0: तो हम तो लग तो गोटो को जाला हासे आले जाला बोल सुनो
1: आले तभी सुनो ये जाला के
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: कानून की बात के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, बात घर की हो, परिवार की हो या समाज की, कहीं भी विकास का प्रथम आधार है शांतिपूर्ण वातावरण। कभी कभी ये देखा जाता है कि किसी घर में पारिवारिक विवाद उत्पन्न होने की वजह से वो विवाद आगे चलकर एक बड़ा रूप ले लेता है और हिंसा जैसी घटनाएं भी सामने आने लगती हैं। अगर कहीं इस तरह की घटना उत्पन्न हो तो घर वाले किस तरह से कानून का सहारा ले सकते हैं और किस तरह से फिर से उस घर में शांति लाई जा सकती है, इसके लिए परिसीमा अधिनियम और घरेलू हिंसा के लिए हमारे संविधान में क्या प्रावधान है, इस पर विस्तार से बातचीत के लिए हमने आमंत्रित किया है श्री विनोद कुमार सैनी को। आप डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल हैं रायपुर में। तो सैनी साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सैनी साहब, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये परिसीमा अधिनियम से क्या अभिप्राय है।
1: ये परिसीमा अधिनियम 1963 में बना है
0: जी।
1: इसे म्याद अधिनियम से भी जाना जाता है और इस अधिनियम से ऐसा है कि पीड़ित व्यक्ति, चाहे वो वादी हो, अपीलार्थी हो, एक निर्धारित समय सीमा में अपने दावा, वाद, आवेदन पत्र, जवाब दावा, अपील, पुनरीक्षण, पुनर्वलोकन याचिका जो है न्यायालयों में पेश किया जाता है। जैसे इस अधिनियम के तहत उदाहरणार्थ 72 से 81 तक में 1 वर्ष की परिसीमा के बाद प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरा, अनुच्छेद 82-84 तक में 2 वर्ष की परिसीमा अवधि वाले मामले पेश किए जाते हैं। तीसरा, 1 से 60 तक में ये अनुच्छेद में प्रावधान है कि 3 वर्ष की परिसीमा अवधि वाले मामले भी हो सकते हैं। 12 वर्ष की परिसीमा अवधि वाले भी मामले हो सकते हैं। 30 वर्ष की परिसीमा अवधि वाले भी मामले हो सकते हैं।
0: ये परिसीमा अधिनियम जो है ये कहाँ कहाँ लागू होता है?
1: परिसीमा अधिनियम संविधान के तहत अलग अलग कानून बनाकर अधिनियम संहिता बनाए गए हैं। वे सभी एक्ट पर समय सीमा निर्धारित किए गए हैं। जिस आवेदन में मजिस्ट्रेट साहब न्यायालय द्वारा कोई फैसला दिया जाता है, जैसे क्रिमिनल में यदि किसी को लोअर कोर्ट से सजा हुई तो 1 महीने के अंदर अपील कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। इस तरह राजस्व भू संहिता में भी प्रावधान है कि तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध SDO को अपील करनी है, कमिश्नर को अपील करनी है तो 60 दिन की अवधि निर्धारित की गई है। दीवानी मामलों में भी वही सब प्रावधान है, 1 महीने 2 महीने सबका एक समय सीमा निर्धारित किया गया है कि उस समय सीमा रहते हुए आपको अपने आवेदन, अपील, पुनर्वलोकन प्रस्तुत किया जाना है।
0: सैनी साहब, परिसीमा अधिनियम किन किन पर लागू होता है?
1: इस अधिनियम के तहत उन

0: जो अपने अधिकारों के प्रति सजग व सतर्क हैं। कानून भी इन्हीं लोगों की मदद करता है। ऐसे जो लापरवाह उदासीन व्यक्ति की कानून कोई मदद नहीं करता है, या कहें सोए हुए व्यक्ति की कानून कोई मदद नहीं करता है। इसलिए अपने अधिकारों के प्रति हर उस व्यक्ति को लागू होता है जो मामले मुकदमे से पीड़ित है। उसे अपने समय सीमा में अपने वकील से या जानकारी नहीं है तो समय समय पर जानकारी लेकर के निर्णयों के विरुद्ध और आवेदनों के विरुद्ध जो भी फैसले हैं या नया आवेदन पेश करने है, एक समय सीमा बनाई गई है।
1: सैनी साहब, अगर किसी व्यक्ति को अवधि समाप्त होने के पश्चात आवेदन, वाद या अपील प्रस्तुत करना हो तो वो कैसे प्रस्तुत करेंगे?
0: जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ऐसे व्यक्ति जो अपना मामला निर्धारित समय सीमा में न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, तब ऐसे व्यक्ति म्याद अधिनियम की धारा 5 के तहत शपथ पत्र के साथ विशेष कारणों के आधार पर अवधि बाहर के आवेदन अपील प्रस्तुत की जा सकती है, जिसमें यह भी है कि इसमें विलम्ब का एक एक दिन का सही व समुचित कारण माननीय न्यायालय के समक्ष बताना पड़ेगा, जिसे न्यायालय जो है उसको सुनवाई में लेगा और ये स्वीकार करने योग्य होगा कि समय इनका जो विलम्ब हुआ है कारण उचित प्रतीत होते हैं तो उसको माफ करते हुए आगे प्रकरण में सुनवाई होगी।
1: सैनी साहब, यदि अवयस्क या विक्षिप्त व्यक्ति है तो वे ठीक होने पर कब तक अपना मामला न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं?
0: जी, ऐसे अवयस्क या विक्षिप्त व्यक्ति जो वादी हैं, मानसिक स्थिति ठीक होने पर 3 वर्ष के भीतर उन्हें न्यायालय में अपना मामला वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, उसको न्यायालय स्वीकार करती है।
1: ये तो हो गई परिसीमा की बात जी। अब हमारा आज का एक और विषय है
0: जी,
1: घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित बहुत सी बातें हैं जो आज हम आपसे जानेंगे
0: जी।
1: तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं सैनी साहब कि घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या है?
0: जी, घरेलू हिंसा की परिभाषा में ऐसे पीड़ित व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग या कल्याण को जो नुकसान पहुंचाता है, क्षतिग्रस्त करता है या करने का प्रयास करता है, ऐसे सम्मिलित हैं शारीरिक दुरुपयोग, यौन दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग तथा आर्थिक दुरुपयोग। जैसे कुटुंब की परिवार में कोई विवाह करके महिला आती है, बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उनको बांझ बोलना, ताना मारना, ये जो है व्यथित व्यक्ति जो पीड़िता है उसके साथ ऐसे कोई अगर करते हैं तो वो घरेलू हिंसा के दायरे में आते हैं। ये घरेलू हिंसा जो है ये 2005 में बनाया गया है, 13 सितंबर 2005 को। इसमें ये भी कहा गया है कि पीड़ित व्यक्ति वह है उसके नातेदार किसी अन्य व्यक्ति से दहेज या अन्य संपत्ति के लिए भी विधि विरुद्ध मांग की पूर्ति करने के लिए प्रताड़ित करने का आशय से तंग करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, क्षतिग्रस्त करते हैं या खतरा पहुंचाते हैं या धमकी देता है, इससे शारीरिक हो या मानसिक, ये सब घरेलू हिंसा की परिभाषा में रखे गए।
1: सैनी साहब, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
0: ये जो महिलाओं घरेलू हिंसा का जो उद्देश्य था संविधान का कि इसको गारंटी युक्त बनाना जिससे महिलाओं को राहत मिले, इस संबंध में इसका निर्माण जो है 13 सितंबर 2005 में हुआ, जिससे ऐसा कहा गया कि ऐसी महिलाएं जो कुटुंब के भीतर किसी प्रकार की होने वाली हिंसा से पीड़ित हैं, संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों को अधिक प्रभावी संरक्षण प्रदान करने के लिए और उससे संबंधित या उससे अनुवांशिक मामलों के लिए उम्मीदित करने के लिए यह बनाया गया।
1: सैनी साहब, घरेलू हिंसा से कौन कौन पीड़ित हो सकते हैं?
0: घरेलू हिंसा से धारा 2 में स्पष्ट किया गया है कि व्यथित या पीड़ित व्यक्ति जैसे कोई भी स्त्री जो प्रत्यर्थी है, जो आवेदिका है, अनावेदक के साथ घरेलू नाता रखती है या रखती रही है, ऐसा वो कथन करती है कि उसके साथ अनावेदक के द्वारा घरेलू हिंसा कृत्य किया गया है। दूसरा, ऐसी संतान जो 18 वर्ष की आयु से नीचे है या दत्तक ग्रहण पुत्र है, सौतेला है या धाय है, पालित संतान सम्मिलित है, इनसे अभिप्रेत।
1: सैनी साहब, घरेलू हिंसा से व्यथित व्यक्ति

0: करनी पड़ती है।
1: जी बहुत अच्छा सवाल है। इस अधिनियम की धारा 12 में प्रावधान किया गया है कि कोई पीड़ित या पीड़ित व्यक्ति संरक्षा अधिकारी व्यक्ति की ओर से एक या अधिक अंतोषों की मांग के लिए मजिस्ट्रेट साहब को आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, व्यथित व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन स्वयं भी प्रस्तुत कर सकते हैं अंतोष प्राप्त करने के लिए। इस अधिनियम की धारा 5 के तहत सेवा प्रदायकर्तागण की सेवाओं की उपलब्धता के बारे में भी बताया गया है कि वो कैसे आवेदन करें। और इसमें सबसे बड़ी सुविधा आजकल मिली है ऐसी पीड़ितों के लिए, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 धारा 12 के तहत इनको निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान कर सकते हैं। डालसा हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा ऐसे व्यथित व्यक्तियों को

0: इस पर यह भी स्पष्ट करना है कि धारा 12 के तहत पीड़ित पक्षकार यदि चाहे तो सीधे मजिस्ट्रेट के यहाँ भी आवेदन कर सकते हैं और चाहे तो संरक्षण अधिकारी के माध्यम से भी पेश करवा सकते हैं, जो इसमें पूरा डिटेल रहेगा कब क्या कैसे हुआ। धारा 13 के तहत इसमें प्रस्तुत आवेदन पर मजिस्ट्रेट साहब संज्ञान लेकर के 3 दिनों में जो प्रत्यर्थी है अनुवादक है उसको नोटिस तामील करवाएंगे और न्यायालय में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाएगी।
1: सैनी साहब, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस अधिनियम से ऐसी महिलाएं जो घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं उन्हें क्या राहत मिल सकती है?
0: जो पीड़ित महिलाएं धारा 12 के तहत न्यायालय मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ आवेदन प्रस्तुत करती हैं उसमें मजिस्ट्रेट साहब जो है प्रथम सुनवाई से 60 दिन की अवधि के भीतर प्रयास करेंगे कि पीड़िता को राहत दिलाई जाए। इसमें जो राहत मिलती है इसमें एक तो धारा 23 है जिसमें इंटरिम भी व्यवस्था की गई है, अंतरिम उनको राहत दी जाए, और धारा 12 के तहत जो आदेश होता है उसमें ऐसी महिलाएं भी हैं जो मजिस्ट्रेट का आवेदन किया गया, मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 18 से 22 तक इसमें प्रावधान किया गया है कि वो अपने जो महिला घरेलू हिंसा की कार्रवाई से पीड़ित है अनावेदक के विरुद्ध यह आदेश पारित करें कि उस महिला के साथ कोई घरेलू हिंसा का कार्य न करें धारा 18 में, या उसको बैंक जाने से, खाता चलाने से, व्यवहार करने से न रोकें, इस तरह उनके अनावेदक के विरुद्ध जो है आदेश पारित हो सकता है। व्यथित महिला निवास में रहने के लिए भी नहीं रोका जाए, ऐसा भी आदेश मजिस्ट्रेट साहब कर सकते हैं, और उसे निष्कासित भी न करें निवास स्थान से, ये धारा 19 में अंतोष मजिस्ट्रेट साहब दिलाते हैं। इस तरह धारा 19 के तहत अंतोष होता है, व्यथित महिला का भरण पोषण पर भी उसकी सुनवाई होती है, उसकी आजीविका के लिए, चिकित्सा व्यय के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इसमें चाहे मजिस्ट्रेट साहब तो एक मुश्त भरण पोषण भी दिलाया जा सकता है या मासिक संध्याय करवा सकते हैं। इसमें संतान की अभिरक्षा का भी है कि पीड़ित महिला जो है उसको अनावेदक से अस्थायी तौर

0: दिला सकते।
1: सैनी साहब, आपने ये बहुत अच्छी जानकारी दी घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के संरक्षण के संबंध में।
2: जुनकी दीदी, ये तो लिखन जो घोटने
3: हाँ हाँ तो, और मैं बोलते रहे कि दाग हम तो जातो समय भले हो से और रोजे दिन आसन आम तो कहीं ना कहीं धरन होते थे रहूं दे मान तारे वे समय अन गेरे ना समय ने हमार माँ तो हम के विदा बल धरुक लागे दे तो विदा धरू
2: ऐसे संगे जातो पूरे बस्तर के स्वर सुन तो सपाए गांव कई दादा दीदी सियान सजन मन की मैं मंगतू
3: और एडो भी धर ले झुनकी
2: हमी तू न करूं से
3: राम राम।

रहे थे कार्यक्रम बस्तर के स्वर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। संध्या के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आमचो।

0: जुहार अर्जुन की दीदी, जुहार
1: जुहार मंगत भाई, जुहार
0: ले अमर लिखने
1: हाओ
0: एचो संग संग आमचो गांव सुन तो सब पाए गांव कारी दादा दीदी सियान सजन मन के मैं मंगतू
1: और मैं झुनकी
0: हमी तू न करूं से
1: जुहार
0: एचो संग संग पीला मन बोलनी बुलको काय
1: हाओ
0: एचो संग संग पी रेडियो कटा कटा बसलो पीला मन के बोले कुबे कुबे
1: माया
0: तो जुनकी दीदी आम्ही तो रोजे दिन चौसान ज्ञान ध्यान चोट मन तो धरून येते चिरू आमने तो होनी आहे आमचो आगे चो खेल तो बोलते भी थी मन के खेल मन केवल बुलकला लोग मन ने तो उसने आए बारा डांडी खेलो तागे लोग नाहले पिटूल हाय और कबड्डी वाले एबे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल सते कबड्डी वाले
1: हाँ हाँ
0: मांतर आगे तो जुगे खेलत लोग मन गांव वन
1: हसते वाली समंग तो भाई दख आजी काली खेल वालों ने तो कई किस्म जो खेल वाली
0: हाँ।
1: मांतर हम सब गांव पारा ने कहा है कि उतरो सुविधा नहीं रहे आगे
0: हाँ।
1: एबे तो टीवी दकुन दकुन लोग क्रिकेट बॉल खेलते
0: हाँ।
1: मांतर हम सब गांव हिसाब ने खेलते जो

0: मतलब फुगड़ी खेलते रहला ने तो ये सपाय खेल जो ना है नहीं
1: भौरा बोले
0: भौरा खेलते रहला बाटी खेलते रहला ने तो ये सपाय खेल जो ना है मन के कितरो हरी के लागते रे खेल लो ने
1: और ये बेचो पिला मन तो मोबाइल खेल सो
0: मोबाइल खेल सो जोन थाने हुन मन पढ़े चो कम और उता फुका चेंज मन के ज्यादा देख सो तो असन हिसाब ने कहा है कि हम के आप लोग जोन परंपरा हिसाब ने रीति नीति हिसाब ने जोन बनाम चो गांव चो हिसाब ने होइस नी चाहे हुन खेल हो चाहे हुन तिहार बाहर हो चाहे हुन दूसर कोनी बोले नगद गोठ हो उनके हमके भूलक तो न है और आप लोग जो न परंपरा हिसाब ने उनके सुरता संगत रहे और सुरता संगन बाते जीवता संगालों ने उनको ये तो पीढ़ी के बारे में सांगुक सकूं दे और सिखाऊ सकूं दे
1: अब आमी केलु रलन तो सिकामा नी केलु रलन कान ले सिकामा नी
0: सते बलदीस
1: तो हम चले गए गोटा गोटा से आले गोट के बोले सुनु
0: आले
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: GST काउंसिल बुधवार ने टेन घोषणा की सरकार सीमेंट तपोर्रो GST मोला 28% तुन कम किस इंजे 18% की सित्ता टैक्स तगा कमी कितांक आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम आयना दुमिद मिंदे इलेकेन संगमरमर इंदनाद और ट्रेवटीन ब्लॉक इतके उनले कटात बंडकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% की सित्तोड़ ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% GST लगे माता इदेन संगेन उसका चुन्नाम ताव ईटा और बंडकल तीन जोड़ाई की अनबूताते वेंड मोला 12% ते कम मास 5% की सित्तोड़।
1: जुनकी दीदी ये गोट तो होली ने मानतराम चो लगे आसे गोटो को नाटक तो ये नाटक आये मंचो भरम ये के लिखला से श्रीमती सुशीला कश्यप प्रस्तुत करला से श्री बलबीर सिंह कच्छ और ये बाग दर लोग पीताम्बर वैष्णव और भरत कुमार गंगादित्य और केमेश्वर पानीग्राही और महेंद्र सिंह ठाकुर और श्रीमती नंदिता वैष्णव और बलबीर सिंह कच्छ
0: तो इतरो लोग भाग धरला से तो फिर सुनू ये नाटक के और हम चो दादी दिन बोले सुनो।

0: गांव भीतर चुकैर कुचर मन्ने जागे से
1: काय गाव सिसना चंदर आले खंडिक जोड़ ले बोल तो गाव तेबे तो नगर सुना दे दे
0: आले तेबे सुन ना सुन
1: आओ
0: ए मारी रोसोना गांव भीतर चुकैर कुचर मन्ने जागे से ए मारी रोसोना एके हुन के टूर चाटोया कसन लागे से ए दे कसन लागे से।

0: यही लगे तो यूं आए बोलून रहे कसन ये बेले नीलो से जाले
1: तुके काय संगेंदे मामा आमच बड़ी ने आसे अमा काय संगेंदे
0: इदली दाएं बोले कहीं नोले कहीं गिट ठसा पारते थे रसिसना आली आओ बस
1: होय ना जब क्या मुरलिस तेबे एदे दक मैं बोले से आल थे बसुक देस्ता है
0: बस
1: तुई एसु आमा खाद लिस कसन
0: काली मंडी बाटले आमा आनून रहे जानू होता है खाऊन रहे मानतर तू यामा चो गोट के कसन पूछ लिस चंदर
1: कसन पूछें ता बोली सियान चो आमा बनवाड़ी के भूलक लिस का है नू
0: पीला बेरा हारक मार खाऊं रहूं जी भूलक लिस बोली डोकरा होता राखा रहे से मानतर गोटो गोट आए ना चंदर
1: काई
0: होता चो आमा चो सुवाद के भूलकुक नहीं हो
1: कसन भूलकी हो दे उन्हीं काजे तो बोले से बुद्धू कि काई असन हिसाब बनाऊं कि आम के आम हाँ बोले मीरो और का कई पोता बोले नी चलो कसन
0: आली मांतर कसन हो सकी आल सांग काई
1: एदे दक संज बेरा सियान घरे जाऊ आए डंडी कसन
0: है
1: उदली दाए खुश सनाए बाड़ी ने ओलते ओलो धड़ा धड़ सुआ दामा चे रुक ने चेकते चेक मा फिर आमा मन के टूटाते टूटावा फिर धड़ा धड़ लोंगी ने ओटी ने धरते धरवा अरु पराते परावा फिर काय रसिया यही लगे अमरुन मन चो खाते खावा
0: मानतर चंदर धरा पड़ले कसन आए उदल दाए फिर मुश्किल होन जाए दे
1: आले जानो होन चुकाजे तू मैं यहाँ से तू काय काज फिकर करसीस ना मैं तो हिसाब बनाए दे काका पता बोले नी चले दे अरु आम चु काम बल बने दे
0: आले किधर दाए तो रहना चंदर
1: मैं
0: तुझी भर छा ना से द
1: आले तू काय काज चिंता करसीस मैं तो आसे है
2: तुके काय संगे दे मामा आम चु बड़ी
3: ने मां संज होली आले डंडी घरे जाए देता आमा बनवाड़ी ने भात खाऊं फिर एंदे इतना कुछ सुनुरले कहाँ गिली कुछ चाबी कुछ ही बोल लो ये दी दिया ये तल लगाऊं दे इंताला जाए दिता
1: गेलो ना डोकरा गेलो
3: गेलो
1: आले आओ ये बाटे आओ
3: हाँ
1: ये दे ये बाटले होलू
3: हाँ
1: आले आले आले आले
0: आले ते भी आले तू डगाओ मैं ये थाले तू चो पिंडा ठेक ले
1: हाँ हाँ ये दे आले आले डगाए स्थाई
3: हाँ
1: आले तू के मैं जी के दे
3: हाँ
1: आले आओ हाथ के दे
3: हाँ
1: ये

0: ये थाई चो आमा खूबी स्वाद आए आले आ चेक चेक चेक
1: ओ गायरा ना सियाना मरलो काहे नको
0: चेक चेक चेक चेक चेक
1: ओ गायरा सियाना मरलो
2: ये सुनाए बोले आगेली सांगुरती जाले काय होती बात आनंद हिंद बोलून होक कहा जाते रले आले काहीच नाही होय बाटे तो भेटले ने भले होली अस्तिर ने खाय दे
1: भले होली ना चंदर होय ना होने टोकरा सिया नंबर लो आओ अब आकर्षण करो अबे आले तू चिंता नहीं कर मैं तो वहां से मैं हिसाब बनाए दे
0: आले, आले।
1: ए लोहंगी के थमना ने ढाकी हो इसे
0: हाँ।
1: और ये बेहुन खाली डगा तू भाई रुकने थे भाई
0: हाँ।
1: आले मैं सियान चो पूरे डगा
0: डगा
1: आले
0: डगा डगा
1: नीचांडे मैं तुके नीचांडे कितरो दिन ले तुई मके मान नी कर लेसिस नीचांडे मैं
2: द्वार लागे महाप्रभु तू कोरास महाप्रभु तुके शरण लागे महाप्रभु
1: तू चो कर चो देव पर चो देव आगे चो देव पाटे चो देव ऊपरे चो देव खाले चो देव सबले बड़े देव नानी देव सपाई मिसुन गोट की देव निछाने निछाने निछाने
2: हे भगवान महापितेश प्रभु हे महाप्रभु
1: मोके तू माननी कर लेस तू ही कमजोर होते जासे बीमार होते जासे तुके नी सके देव तुके नी सके भूत नी सके सिरा नी सके गुनिया नी सके बीमार चेहरा से डॉक्टर नहीं सके नर्स नहीं सके बीमार चेहरा से
2: महाप्रभु मौके माफी देश भगवान माफी देश
1: कोनी नहीं सकत कोनी नहीं सकत
2: भगवान
1: बेहोश होलो काय नोक ए बुधू आले उतर ना रुको पर ले उतर
0: उतर ले
1: उतर ये देख लो
0: ये चंदर
1: हाँ
0: होली बुता ना
1: कसन
0: काशियान मर लो काय खंडी खंडी पुट पुट करे से
1: है दे दकासन करूं
0: हाँ
1: मैं जाए से बाहर याले लुकुन रहे दे
0: हाँ
1: तू ये के पानी पाना छीच
0: हाँ
1: और घरे हम रहूं देस
0: हाँ
1: हो आले आले
0: ये हम रहे
1: हाँ छीच
0: छत्ती आए पुट तो ने मैं काय बोलें दे चंदर
1: यही बाट ले जाते रहे बोलूं बोल काय समझ लीस
0: हाँ हाँ ये दे पानी आन ले काका कसम काका काय होली ना
3: ए बाबू मैं देव के देख लेना खूब डर ले बाबू हुने ने बेउसन गेले ना परले होली हाय राम
0: काई नहीं होय काका काई नहीं होय आली पानी पाना पीऊ काका यही बाटे जाते रहे गुनुक विचार कर ले काका लगे होलुन दखें दे बल ले
3: दे बाबू भले कर लीस ना इलीस मानतर ये मैं कसन करिंदे जाले बाबू मके काई ना आले काई तो करू चलागे दे
0: आले काय करू आज जाले कर काय काका हां मैं जाय छी काका जाय छी
3: मल जा
0: हां मैं जाय छी
3: ते बस हले जा ता मैं कसन करिंदे काई तो करू चलागे दे मके तो ठाने जर जर असर लागली मुंड बोले खिंडी खिंडी दुखे से जय माता माई माय कंकालीन माया दुर्गा दंतेश्वरी सपाई के मैं पाए

0: बुद्ध बाबू आता काय के उजरू आता बाबू करले होलीबे जसन चो हुसने चीसो लासत
1: आय
0: दुनिया के बोल दो खालू जे के बोलो ने हुनके दखाऊ से मान तर एमन गोट किछि गोट के बोल सोत बाबू सुना तो
1: काय गोट की बोल छिस ना काका ए काका
0: सांगा हो दे
2: नोय बाबू हम देव नहीं पर छोट हुन गोट की गोट के बोलते रहे बेमार चे रसे बोले ना मोके तो सुरता करूं ए भी बोले डरे च लागे ना
1: ए ना काका बीमार से मारी होले बोले इलाज करालो ने हुन नगत हुआ है ना काका
2: नुआ बाबू हुन देव बोलते रहे ना उनके कोनी चीनी सकत बोले सिरा गुनिया।

0: वैद्य डॉक्टर कोनी चीनी सकत मने सुन लीस बाबू मैं नहीं उजरे बिना मके तो मुश्किल होन गेली जाले काई करनी करू नहीं बिना एक आजे ऐसन भूखते से काहे न
1: वो गायरा काकी असन नोय काका तू नगत होसे ना
0: सपाय फंद गोटाय बाबू अबर मैं नहीं उजरे बिना
2: भगवान मुझे तो करम ची फूट ली हाय रे मुझे करम मैं कौन दिन चुका चुकर जा खाऊ रहे जाने परले होली हाय रे मुझे करम
1: वो गाय रहा काकी वो गाय रहा काई नहाले काई जतन करवा आरु काका के कसनी करुन बोले उजरा
2: अले कसनी बोले करा बाबू एमन के उजरा तू वाट के बनावा अल काई चिबल करा
1: करवा नु करवा करवा मैं तो आसे आले आले मैं जाय सी काकी आय
2: हां बाबू आले फेर यहां से
1: हां दे दे परले होली ना चंदर
3: काय होली
1: आमी असन विचार नी करुन रहू
3: हुन दिन चो गोट के सियान आपलो मने धरलो जानू ना यही कारण हुन एबे बीमार ऊपर बीमार हो इसे
1: ओ ना कौन बोले से हुनी देव नी उजरी बोलून बोललो यही काजे मरले बोले नी उजरे बोले से उनके कसन समझावा जाले काकी ऐसा गाकते रहे ना
3: जाले बुदू काई तो खुरुक लागे दे है
1: अल कसन करवा चंदर तू ही से सांग ना
3: हाय जानू जाले नसाले से तो मैं बनाओ बोले मुखीच पड़े दे ने तू ही चिंता नहीं कर
4: मच संगवारी बोले से मने बांधू बाली फूल मच संगवारी

0: बनवाड़ी रे
1: आले ते भी हिसाब बनाओ कहीं बोले चंदर हिसाब बनाओ ना
0: होए दे ना आले जो
1: काकी ए काकी
2: ए, कौन आए ए कसन बाबू बुदू
1: ओए
2: ए चंदर बोले लो से आली आया भीतर ही हा ए तो काय करू हस बाबू ए तो काय मन के दखानू
1: चिंता नहीं कर काकी ये बे मैं गुटु खूबे जानकार माने के आन ले से
2: काय की चिंता नहीं करे बाबू अल कौन आए हम जानकार माने
1: ये दे काकी ये दे ये आए जानकार माने
2: ए चंदर बड़े बड़े बोई द मन तो सर लावे बाबू ये चंदर फिर कसन करून तुम च काका गुजरा हुआ है बे
1: ये खार करून दखलून काय होई दे काकी केवे केवे नानी लोग बले बड़े बड़े काम करून दखवा
3: हो काकी केवे केवे सते ओसो मिर ले बड़े बड़े बीमारी मन बल गुचुन जासो मांतर मोचो ओसो के मैं काकई नी दखाई अरे तुम के बाहर या जाऊ लागे दे हैं अरे जा
1: आले जाऊं दे जाऊं
2: दे
1: जाऊं दे
3: एना सियान
4: तू कोन हस ना
3: ए मैं आए चंदर अलकसन आशीष अल सांगुंद
4: चंदर नांगत नहीं आए बाबू मुके देव बल्ली सीधा मैं नी उजरे बोलन बाती
3: नो आए ना काकू देव मुके राती बेरा सपना ने बल्ली तू ही काल के जा से
4: अच्छा।
3: अरु बोली के बोल से हुन उजरे दे बोलू
4: हाँ
3: मुके शक्ति देवन भाती हुन ही देव यथा पठाली से ना
4: तू ही बाबू
3: हो
4: मोके नी हैंड साव ना
3: मैं नी हैंड साए काका तू ही मोके सांग हुन देव तू के काय

0: मैं बीमार पड़ते गेले कितरे ही लोग इलाज करून थाकून गेला देवचो गोठ सत्य होली मैं नी उजरे बे बाबू
1: द काका मैं सुमरना करें से

0: मांतर भीतर चो दवाई के तो मैं खादले से आगे जानू मौके भरोसा नहीं रहे बाज तो एवे बाचें देचे मौके कौन मारू सके यही काजे मैं जीन दे चे हाँ सोना है मैं जीन दे चे
1: ठीक है सियान तू 100 साल ले आकर जीव से ना
2: आम जो बाटले बोले शुभकामना दे उसे आमी 100 साल ले आकर जीव
1: हाँ हाँ

0: आले कसे नबुदू सांग तू का जे ऐसा नाम के अरुसियान मन के बले था बसाली चीज ना जगती सांग
1: दखना काकू अरुसियान मन आजी मैं गोटो कहनी।

0: तो मंगतु भाई
1: हाँ
0: काय मंच भरम के सुन लु ने
1: हाँ
0: और काय रसिया रहे ये नाटक
1: हाँ
0: और एक ये नाटक ने नहीं ये सिखो को मिल ली
1: हाँ
0: हम जो गांव का दाद दीदी मन बोलनी खूब भरम ने रोवा
1: हाँ
0: ने खिंडी बोल का जर मुंड होली बोल नहीं हुन फनला नहीं मो का अच्छा दखते रहे होनी ची पांगलस मो के तो असन होक नहीं सके के भी काय होय से देह पाए जर्मुंड बल होक सके तो हमके डॉक्टर लग जातो सिर लग जातो नो है तो मन चो भरम के गुचातो रहे ने तो उन हिसाब ने ये नाटक के हम सुन लो और ऐसे हम चला के गीत बलिया से तो एक बलि सुनो।

0: की दीदी, ये गीत के तो सुन लू ने और ये गीत कुरिया मन नाव चिताली
1: ये मना जलंधर और उन्होंने तो संगवारी
0: मन तो उसने तो रोज दिन चौसन तो घोटो ली ने वहां तो राम चौजा तो समय बल तो होई से
1: हाँ हाँ
0: अल मोड़ा गोड़ा सकल भाई बीता धरें दे
1: आलते भी
0: जा तो पूरे आमचो गांव सुन तो सपाय गांव कारी दादा दीदी सियान सजन मन के मैं मंग तू
1: और मैं झुनकी
0: हम दोनों करूं से
1: जुहार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम मामचो गांव। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। कार्यक्रम बालीपुल में आइए सुनते हैं लखेश्वर खुदराम और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: बड़े बलिदान बस्तर लाल लाले लाल होली गर्जुक धरली बंदूक गोली बस्तर लाल।
1: आप सुन रहे थे लकेश्वर खुदराम और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पिला मन काजे गोट। प्रस्तुत करता है लखनऊ।

0: तो पाटके दखा उठा काय उठा हो भारत माय तो वीर पीला मन उठा काय उठा हो भारत माय तो वीर पीला मन।
1: पीला मंच गोट कार्यक्रम सुन तो सपाए नानी बड़े पीला मन के खूबे खूबे मया और जुहार। तो पीला मन आपलो जीवना ने नंगत जीवना जीव तो काजे आम के खूबे मेहनत मशागत करो पड़े से और हुन मेहनत मशागत पीला बेराले शुरू होए से और गांव पारा संग संगे देश विदेश ने नाम कमा तो काजे समाज जो कुरीतियां समाज के बाढ़ती बाटने ने तो काजे आम के जीवना भर मेहनत मशागत करुक लागे से असने आमचो देश ने गोटोक असने महापुरुष रला जे देश चो बाढ़ती काजे समाज चो कुरीतियां के गुचातो काजे महिला और समाज चो लोग के हक अधिकार दिलातो काजे पीला बेराले धरुन आप लो जीवना भर मेहनत मसागत पढ़ाई लिखाई चो प्रेरणा देउन समाज के शिक्षित करला और हुन चो नाव आए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर।

तो पिला मन बाबा साहेब पिला बेरा ले ही कठिनाई मन के सामना करुन भाती आप लोग काम ने डटून रहे केवल निराश नहीं हो लो आप लोग काम के ईमानदारी ले कर लो। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर जो जन्म 14 अप्रैल 1891 ने मध्य प्रदेश जो महू छावनी नाव चो गांव ने हौरली। बाबा साहेब दलित जाति चो रलो कारण हुन से मियाने ये जाति चो लोग के अछूत मानते रला छुआछूत चो भेदभाव खूबे रली। स्कूल ने बाबा साहेब के पढ़तो बेरा संगे बसुक नी दिला हुनचो छिवलो पानी के नी पीते रला और दूसर पिला मन संगे खेलुक बले नी दिला मानतर हुनचो पासे बले बाबा साहेब के बय हार नी मान लो हुनके पढ़तो लिखतो ने खूबे लगाव रली। कठिन ले कठिन समयाने बले बाबा साहेब ईमानदारी ले पढ़ाई करते रलो और बाबा साहेब चो बाबा बले पढ़ा लिखा देश चो सिपाही रला। बाबा साहेब चो बाबा बले पढ़ा लिखा देश चो सिपाही रला जे आप लोग पिला मन के पढ़ाते चो क्रिया खो रला। आम चो बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा चो मिसाल रला। डॉक्टर बाबा साहेब बॉम्बे विश्वविद्यालय ले स्नातक चो पढ़ाई पूरा कर लो पासे अमेरिका देश चो कोलंबिया विश्वविद्यालय ने पढ़ाई करला। उथा जौन भाती बाबा साहेब अर्थशास्त्र राजनीति और समाज शास्त्र जैसन विषय ने पढ़ोन भाती महारत हासिल करला। हुंचो पासे फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी ने बले पढ़ाई करला। तो सोचा पिलामन हुन जमाना ने लोग विदेश जातु काजे सोचते बल नी रला हिंदी बल मुश्किल ले पढ़ते रला। हुन समयाने बले 10 भाषा चोले आगर जानकार रला जसन मराठी हिंदी संस्कृत अंग्रेजी गुजराती और जर्मन जसन भाषा चो बढ़िया जानकार रला। तो पिलामन हुनिका जे मैं सांगे से आजकल कल युग चो समयाने पढ़तो लिखतो चो सपाय साधन होते रले बले आजकल चो पिलामन बुल तो फांदा ने रसोत असन करतोर नुहाय पिलामन आप लो जीवना चो महत्व के जानुन भाती पढ़ाई लिखाई करुन आप लो जीवना के संवार तो राय आप लो ही काम के नाई समाज चो हित का जे बल काम करतो राय। पढ़ाई लिखाई मात्र नौकरी पावतो चो साधन नुहाय पढ़ाई लिखाई कर लो ने आप लो सर्वांगीण विकास होय से काई बल बुताचो क्षेत्र ने सफलता हासिल करुक होय से काई बल बुताचो क्षेत्र ने सफलता हासिल करुक होय से। हुनिका जे पिलामन परिस्थिति कसने बल रहो पढ़तो लिखतो बुता के बय नी भुलकतो राय ईमानदारी ले आप लो बुता के करतो राय। आमचो बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा चो मिसाल रला और पिलामन आमचो बाबा साहेब समाज चो ऊंच नीच भेदभाव लोग मन के ऊपर उठोन भातीन समाज ने समानता आनला समाज चो समानता चो पक्षधर रला। तो पिलामन बाबा साहेब विदेश ले पढ़ाई करुन इलो पासे दखलो कि समाज ने ए भी बले भेद छुआछूत और अत्याचार आसे हुनिकाज बाबा साहेब आप लो जीवना ने दलित आदिवासी गरीब माता महीन के समाज ने काम करते चो स्थान निमिरते रली महिला मन का जे अधिकार चो गोट गोठे हुन मन के समाज ने सम्मान पूर्वक काम दिलाला और बल्लो की केवल समाज चो नंगत बाटती करतो आय जाले महिला लोग हो या पुरुष दोनों।

के समान अवसर देउक लागे दे। बाबा साहेब समाज बाढ़ती काजे आंदोलन चलालो, दलित भाई बहन मन के मंदिर ने प्रवेश काजे लड़ाई लड़लो और बल्लो की कोनी बल धर्म और व्यवस्था का के दबाए से तो उनके बदल तो जरूरी आए। और पीला मन बाबा साहेब भारतीय संविधान चो निर्माता बल रलो, संविधान लिखलो बीता बल रलो। जिदल दाय भारत देश आजाद होली तो उदल दाय भारत के चला तो काजे असन संविधान चो आवश्यकता रली, जे सपाए के बराबरी हक अधिकार न्याय और स्वतंत्रता देख सके। तो पीला मन एचो जिम्मेदारी बाबा साहेब जी की मिरली। बाबा साहेब भारतीय मसौदा समिति चो अध्यक्ष बनला और दिन रात एक करुण भातीन मेहनत करुण 26 जनवरी 1949 के भारत चो संविधान बनाला और ये संविधान सबले बड़े और सबले प्रगतिशील संविधान माना जेली। 26 जनवरी सन 1950 के भारत गणराज्य बनली और आम के जे हक अधिकार मिलली जसन बलतो चो आजादी, पढ़तो लिखतो चो अधिकार, वोट देतो चो अधिकार, जम्माय अधिकार दिला तो बीता आमचो बाबा साहेब रला। तो पीला मन बाबा साहेब चो विचार आमचो तुमचो काजे प्रेरणा चो स्रोत आए। जसन बाबा साहेब बलू रहे, शिक्षित बना, संगठित रहा और संघर्ष करा, ये चो मतलब ये है पीला मन। आगे पढ़ाई लिखाई करा, फिर मिलून जुलून रहा और समाज ने बदलाव आना और कहाँ गलत होए से तो हुंचो खिलाफ आवाज उठावा। बाबा साहेब मानते रहला कि गोटोक पीला पुस्तक ले जित्रो दोस्ती करे दे उत्रो ही आप लो जीवना ने आगे बढ़े दे। काचोय जाति धर्म और रंग नहीं, मानतर हुंचो कर्म और ज्ञान खूबे महत्वपूर्ण होए से और महिला मन के बले पुरुष मन चो असन समान अधिकार मिलतो राय। बाबा साहेब वायस राय चो कार्यकारिणी परिषद चो श्रम मंत्री रहून फैक्ट्री अधिनियम 1946 ने, ट्रेड यूनियन 1947 ने संग संग और बल जरूरी श्रम सुधार अधिनियम लागू कराला और हुंचो वकालत बल करला। बाबा साहेब श्रमिक मन काजे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चो आधारशिला रखला जे खूबे बड़े भूमिका रली और कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि योजना चो निर्माण के सक्रिय रूप ले समर्थन कराला, जे क्रमशः चिकित्सा बीमा और सेवानिवृत्त लाभ बल दिलाला। और पीला मन बाबा साहेब स्वतंत्र भारत चो पहला विधि मंत्री एवं न्याय मंत्री बल रहला। मंत्री पद ने रहून सबले उल्लेखनीय योगदान दिलो, जसन हिंदू कोड बिल चो शुरुआत करला जे चो उद्देश्य हिंदू मामला मंचो व्यक्तिगत कानून मंचो संहिताबद्ध और सुधार करतो रली और महिला मन के व्यक्तिगत मामला ने समान अधिकार देतो रली। मानतर बिल संसद ने पारित नहीं होली जे चो कारण सन 1951 ने बाबा साहेब नेहरू मंत्रिमंडल ले इस्तीफा दिलो। ये चो पास पीला मन बाबा साहेब राजनीति बाटले रेंगलो, बल्लो ने राजनीति प्रयास ने नव स्वतंत्र भारत ने चुनाव चो माध्यम ले संसद भवन ने प्रवेश करतो चो प्रयास करलो। मानतर ये था ने बले राजनीति जीवना ने बल सफलता नी मिरली और कई चुनावी हार बल मिरली। 30 सितंबर 1956 के बाबा साहेब आप लो आगे चो बनालो संगठन अनुसूचित जाति संघ के समाप्त करुण भातीन रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया चो स्थापना चो घोषणा करलो। फिर पीला मन हुंचो पासे बाबा साहेब सामाजिक न्याय समानता खोजतो काजे बौद्ध धर्म ने मिस्तो चो मन बनालो, हुंचो शुरुआती करियर ले ही बौद्ध धर्म के मानते रहलो। बाबा साहेब कई ठन दर्शन शास्त्र और धर्म ग्रंथ चो अध्ययन करू रला। मानतर 1935 ने येवला नासिक ने गोटोक प्रांतीय सम्मेलन ने पहल हार सार्वजनिक रूप ले घोषणा करून कि मैं हिंदू धर्म ने पैदा होने से मानतर मैं हिंदू चो रूप ले मरु नुहाए। 14 अक्टूबर सन 1956 के बाबा साहेब जी नागपुर ने आयोजित गोटोक विशाल सार्वजनिक समारोह ने औपचारिक रूप ले बौद्ध धर्म के अपना ला। हुंचो निर्णय सिर्फ गोटोक व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकल्प निरली बल्कि गोटोक राजनीतिक और सामाजिक बूताबल रली, बल्कि जेचो उद्देश्य हिंदू जाति व्यवस्था के अस्वीकार करतो रली। ये चो पासे बाबा साहेब आप लो बाचलो जीवना के बौद्ध धर्म चो प्रचार प्रसार ने लगा लो। तो पीला मन बाबा साहेब चो धर्म परिवर्तन भारतीय और राजनीति ने गहरा प्रभाव कर ली। ये चो कारण दलित और बौद्ध धर्म चो मंजी सामूहिक रूप ले धर्म बदलतो चो आंदोलन शुरू होली, जे के दलित बौद्ध आंदोलन चो रूप ने जानू खोली और आज ले बले ये चलते ऐसे। तो पीला मन बाबा साहेब चो जीवना ने काय काय सीखुक मिरली। जीवना ने कई बल हो, मानतर पढ़ाई लिखाई के बाई छाण तोर नुहाए और काचो ले नानी बड़े चो भेदभाव नी करतो राय, छुआछूत

सन रूणी प्रथाले ऊपर उठुन सपाई संगी मिसुन बुता करतो राय। नंगत जीवना और ईमानदारी ले आपलो लक्ष्य ने बढ़ते रहतो राय और समाज ने जहां बले असमानता और अन्याय दखा दे से आवाज उठातो राय। असन महापुरुष के नमन करू से पाए पणु से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सिर्फ गोटोक मनुक नु आए बल्कि विचार चो बड़े क्रांति रला और आजी बले मैं तुम चो संग जे गोट गोठियाए से ये बल बाबा साहेब चो कारण ही गोठियाए से। आले जाओ आमी बले मिलुन जुलुन हुन चो सांगलो बाटे रेंगवा और नवा भारत बनावा जहां सब पाए लोग समाज ने समान रहुआ और संगे संगे शिक्षित स्वतंत्र और जागरूक रहुआ। तो विदा दिया पिलामन सपाए के जुहार।

0: मतो पाठ्य दखा उठा काय उठा हो भारत माय तो वीर पीला मन उठा काय उठा हो भारत माय तो वीर पीला मन।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम पीला मन का जे गोट, प्रस्तुति थी रखनुराम मरकाम की। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। समाचार संध्या एवं न्यूज 8:09 अब हम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
4: न सनसनी न सनसनी न सनसनी न उत्तेजना न उत्तेजना न शोर दिन रात न शोर दिन रात न शोर दिन ना ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का

0: यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का

0: ना उत्तेजना
1: ना शोर दिन रात
0: ना ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हाँ, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।

ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़वरेव का मैच

0: भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का होर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फूकवाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में

0: चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
1: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे ना तो स्वीकार करता है और ना ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
2: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40

जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40

0: और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा, यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
2: गृहमंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेले जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुआओ हानयू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सिमी समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील हैं। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रहा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देशभर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देशभर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

101.1 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में, फिल्म यादों की बारात से। गीत रचना है मजरूह की और संगीतबद्ध किया है RD बर्मन।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: कार्यक्रम का अगला गीत है द ट्रेन फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाजों में। बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत से सजाया है आरडी बर्मन।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: कार्यक्रम का आखिरी गीत है किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म अजनबी से। आनंद बख्शी का लिखा गीत है एवं तर्ज बनाई है आरडी बर्मन ने।

0: सर्जन।
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।
1: हाँ।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: कार्यक्रम दौना में आप सुन रहे थे मधुराम और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। समाचार अब हम क्रमशः हिंदी एवं अंग्रेजी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
2: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। यह बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया कि होर्मुज जल डमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जल डमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरा होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फू स्कोक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन्ह हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विरासत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की योजना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र

क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से कल शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने चीन के ऑर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

90.8 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा समाप्त होती है। कल सुबह 5:51 पर हमारी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद।